एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की नवी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे।

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजीआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में सुनिए विचारों का महत्व विषय पर विचार।
2: निर्माण में विचारों का बड़ा महत्व है। कहा भी गया है कि विचार से प्राण बल प्राप्त होता है, यानी हृदय में आप जैसा विचार करेंगे वो वैसा ही बनता है। श्रेष्ठ और रचनात्मक विचारों से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आप जैसी कल्पना करेंगे आपका भाग्य भी वैसा ही बनेगा। कहने का मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सफलता के लिए विचारों को एकाग्र करना कितना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार पानी की बूंदें एक ही स्थान पर गिरती हुई पत्थर को भी तोड़ देती हैं, उसी प्रकार विचारों की निरंतरता, एकाग्रता संसार की प्रत्येक बाधा का सामना कर सकती हैं। हम में, आप में से न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज की चिंता न कर कल के बारे में सोचते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो कल की चिंता में अपने आज से भी हाथ धो बैठते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य की किरणें किसी वस्तु को नहीं जला सकती, परंतु उन्नतोदर ताल यानी कि अंतर्गोल लेंस की सहायता से केंद्र बिंदु पर केंद्रित हुई वही किरणें लोहे को भी पिघला देती हैं। विचारों के केंद्रीकरण में भी इसी प्रकार एक विशाल शक्ति निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि आपको अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करनी है, यानी कि विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करना है। डगमगाते विचार मस्तिष्क में कदापि ना लाएं। अपने मस्तिष्क में पुष्ट और स्वस्थ विचारों को स्थान दें। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले उसकी सफलता के बारे में अधिक चिंतित हो जाते हैं। यदि आपके मन में भी ऐसा विचार है तो उसे अभी से त्याग दें। शंका और अविश्वास को अपने से अलग कर दें। संशयात्मक विचारधारा मनुष्य को अवनति की ओर ले जाती है। अपने मस्तिष्क को हमेशा हल्का रखें, विचारों को स्वतंत्र रखें। शुभ विचार आपको सदैव आत्म विकास की ओर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं और आपकी सोच, आपके विचार नकारात्मक हैं, तो आपको रोगग्रस्त होते देर नहीं लगेगी। कुविचारों की कल्पना से स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो जाता है। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही उसका संसार क्षेत्र बनता है। ये उक्ति अक्षरशः सत्य है। जैसे आपके विचार हैं, संकल्प हैं, उन्हीं के अनुसार आपके जीवन का निर्माण होगा। विचार ही इच्छा शक्ति को उत्प्रेरित करते हैं। हम जिसके बारे में दृढ़ विचार और विश्वास रखते हैं उसे अवश्य प्राप्त करते हैं। उत्साहवर्धक विचार जीवन के संघर्षों का सामना करने में सर्वाधिक सहायता पहुंचाते हैं। नैराश्य, हीन भावना, कुंठा, अकर्मण्यता और निरुत्साह का आज ही से साथ छोड़ दें। स्वभाव से ही सरस, सहृदयी और सजीव बनिए। जीवन की उपमा सरिता से दी जा सकती है। उसे शुष्क नहीं होना चाहिए, निरंतर सरस ही रहना चाहिए। आशामय विचार आपकी समस्त मानसिक शक्तियों को एकत्र करके कार्य में नियोजित कर देंगे। अपने मानसिक गुणों को उभारें। बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, निर्णय शक्ति, संकटों को झेलने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने के आसान तरीके आदि आपके मन के वे गुण हैं जिन्हें विकसित करना आपके अपने हाथ में है। इनका विकास तनाव की स्थिति में तो बिल्कुल संभव नहीं होता। नकारात्मक सोच जहां आपकी विचार शक्ति को क्षीण करेगी वहीं आपके ध्येय को आपसे कोसों दूर ले जाएगी। साथ ही उच्च रक्तचाप आदि रोगों को आपकी झोली में टाल देगी। यदि आपको सफल और सुखी बनना है तो अपने सुषुप्त मानसिक गुणों को विकसित करें। निरंतर उच्चता की ओर जाने के विचार मन में संजोए रखें। याद रखें, आपको ऊपर उठना है ना कि नीचे गिरना है।
1: अभी आपने विचारों का महत्व विषय पर आज के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आराधना। सुबह के इस पावन बेला में तरंगों के माध्यम से हम आपके दिल के आंगन तक पहुंच रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम आराधना। श्रोताओं, जीवन की आपाधापी में जब मन थोड़ा विचलित होने लगे तो ईश्वर का नाम ही वो पतवार है जो हमारी नैया को पार लगाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जगत के पालनहार, सृष्टि के कण कण में वास करने वाले प्रभु से।

हे नारायण भजन के इन मधुर सुरों ने सचमुच सुबह को दिव्य बना दिया है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा हो। इस भजन को सुनकर आपका मन भी शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया होगा। भक्ति प्रवाह का ये सफर आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये भक्ति गीत।

इस वंदना को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मन की सारी चंचलता शांत हो गई हो और एक असीम शांति का एहसास हो रहा हो। माँ वीणा वादिनी का यह आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में भजन।

जब बात सफर को मुकाम देने की हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से सुंदर और भला क्या हो सकता है। कहते हैं राम केवल नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का आधार है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं और अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से राममय कर लेते हैं। सुनते हैं ये सुखद भजन।

राम नाम की इसी गूंज और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आज की सुरीली और भक्तिमय सुबह ने आपके दिल को एक अनोखे सुकून से भर दिया होगा। आप सभी पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनाए बुधादित्य साथी अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण मन्ना डे के गए भजन। इसी के साथ हमारी आज की आराधना अब यहीं पर संपन्न हुई।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:40 होने वाले हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है आज की बात। श्रोताओं, तारीखें सिर्फ कैलेंडर बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि हर तारीख अपने पीछे समेटे होती है कहानियों का एक समंदर। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज है 30 मई। चलिए घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं अतीत के सफर पर। सभी श्रोताओं को विभू कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन भारत के मीडिया जगत और हम सभी के लिए बेहद गर्व का दिन है। आज ही के दिन यानी 30 मई सन 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से उदंत मार्तंड नाम से अखबार निकाला, इसलिए आज के दिन को पूरे देश में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब रुख करते हैं दुनिया के इतिहास का। फ्रांस की उस जाबाज बेटी की कहानी जिसका नाम इतिहास में अमर है, जोआन ऑफ आर्क, मात्र 19 साल की उम्र में आज ही के दिन सन 1431 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने के आरोप में रुआन में खंबे से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। बाद में उन्हें संत की उपाधि दी गई। उनकी बहादुरी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। और अब बात समंदर के किनारे ठंडी हवाएं और खूबसूरत बीचेस की। कुछ याद आया आपको? जी हाँ, गोवा। आज ही के दिन 30 मई सन 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर भारत के 25वें पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले देश के तटीय राज्य गोवा के लिए दो तारीखों का विशेष महत्व है। पहली 19 दिसंबर और दूसरी 30 मई। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों के 450 वर्षों के शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। ये तारीखें गोवा की मुक्ति से लेकर उसकी उन्नति और प्रगति की द्योतक हैं।

और अब बात आलू की। जी हाँ, हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत आलू के पोषण, आर्थिक महत्व और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इसके योगदान को उजागर करने के लिए की। भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। अब आलू से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प तथ्य सुनिए। आलू मूल रूप से दक्षिण अमेरिका पेरू की फसल है। दुनिया भर में आलू की 4000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। भारत में इसे सब्जियों का राजा माना जाता है। आलू के उत्पादन के मामले में

आलू उत्पादक देश है। अब आलू से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प तथ्य सुनिए। आलू मूल रूप से दक्षिण अमेरिका पेरू की फसल है। दुनिया भर में आलू की 4000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। भारत में इसे सब्जियों का राजा माना जाता है। आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है। 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के जीवन में आलू के योगदान पर प्रकाश डालना था। श्रोताओं, कला और सिनेमा की दुनिया के लिए आज का दिन एक खालीपन लेकर आया। 30 मई 2013 को भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और संवेदनशील निर्देशकों में से एक ऋतुपर्ण घोष ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने चोखेर बाली और रेनकोट जैसी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में दी। सिनेमा में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो श्रोताओं, ये थी आज यानी 30 मई के इतिहास की कुछ अहम पन्नों की बातचीत। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि इतिहास से सीखिए, वर्तमान को जीते जाइए और भविष्य को खूबसूरत बनाइए। विभु कृष्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आपने देशगान सुना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं, प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविधा। विविधा के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास है। आज है 30 मई यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज ही के दिन साल 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तन की शुरुआत किया था, जिसका मतलब था उगता हुआ सूरज। इस सूरज ने देश में चेतना की वो रोशनी फैलाई जिसकी तपिश हमारे पहाड़ों तक भी पहुंची। और जब बात पहाड़ों की पत्रकारिता की हो तो हमारे अल्मोड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा का पत्रकारिता से रिश्ता सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि क्रांति का रहा है। जरा सोचिए, आज से करीब 150 साल पहले, जब न इंटरनेट था न फोन, तब 1871 में अल्मोड़ा से एक साप्ताहिक अखबार शुरू हुआ था, अल्मोड़ा अखबार। ये सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश के शुरुआती हिंदी अखबारों में से एक था। बुद्धि बल्लभ पंत जी के संपादन में शुरू हुआ ये अखबार शुरुआत में तो सामाजिक मुद्दों पर बात करता था, लेकिन जब 1913 में बद्रीदत्त पांडे जी ने, जिन्हें हम कुमाऊं केसरी भी कहते हैं, इसकी कमान संभाली तो इस अखबार ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। कुली बेगार प्रथा और जंगलात के कड़े कानूनों के खिलाफ अल्मोड़ा अखबार ने वो आग उगली कि बौखला कर अंग्रेजों ने 1918 में इस पर भारी

जुर्माना लगाकर इसे बंद कर दिया था। लेकिन अल्मोड़ा की रगों में जो पत्रकारिता दौड़ रही थी उसे दबाना नामुमकिन था। कहते हैं ना कि सच को दबाया नहीं जा सकता। अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो उसी साल विजयादशमी के दिन बद्रीदत्त पांडे जी ने एक नया अखबार शुरू कर दिया जिसका नाम था शक्ति। शक्ति ने सचमुच जनता को वो ताकत दी कि तत्कालीन कमिश्नर को कहना पड़ा था कि अल्मोड़ा के पत्रकारों की कलम में जहर है, लेकिन वो जहर नहीं देश प्रेम का अमृत था। इसके बाद समता, स्वाधीन प्रजा और जागृत जनता जैसे अखबारों ने अल्मोड़ा की धरती से शोषितों और दलितों की आवाज बुलंद की। आज हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहां हर हाथ में खबर है। तब हमें देश और अल्मोड़ा के उन निर्भीक पत्रकारों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पैसों की तंगी और जेल जाने के डर के बावजूद भी सच का साथ नहीं छोड़ा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अल्मोड़ा की इस महान और गौरवशाली पत्रकारिता परंपरा को हमारा शत शत नमन। ये दिन न केवल हिंदी पत्रकारिता की नींव रखने वालों को याद करने का अवसर है बल्कि निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता के मूल्यों को भी बढ़ावा देता है। विविधा के आज के अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
0: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, LPG इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस

0: इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टनपरिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरणसंस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विण्टल् परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीयदिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।

0: उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती, और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा स्मिता मुकाशी का ख्याल गान। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही क्षणों उपरांत 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 109। महिलाएं अपना कार्यक्रम अर्पण सुनेंगी दिन के 12:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी प्रकृति से सीखिए सहज बनिए। पोषण की पाठशाला में सुनिएगा आलू से बने विभिन्न व्यंजन। दिन के 1:30 पर सुनिएगा नाटक एक था लेफ्टिनेंट विजय राजे के मराठी नाटक का हिंदी रूपांतरण। दिन के 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें, जिसमें आज चर्चा होगी मशरूम की वैज्ञानिक काश्त। जानकारी देंगे डॉक्टर के मिश्रा।

युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज की बात में चर्चा होगी गोवा दिवस पर। 5:45 पर उत्तरायण प्रसारित किया जाएगा। आज सुनिएगा इस कार्यक्रम में वार्ता अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर और प्रधानमंत्री कुसुम योजना। साथ ही सुनेंगे आप मिशन लाइफ जल की बचत आज की ज़रूरत विषय पर वार्ता। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 7 प्रसारित किया जाएगा। आज की बातें में सुनिएगा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषक शेर सिंह से प्रमोद कुमार पांडे की भेंट वार्ता।

शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर और 11:30 पर। लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, लोकमंजरी दिन के 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत, और शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम के तहत। सुगम संगीत का लुत्फ उठाइएगा सुबह 10:05 पर सबरंग, दिन के 1:15 पर सुगम संगीत, और रात्रि 8 बजे सबरस कार्यक्रम के तहत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही कलाकार, 11 बजे सैनिकों के लिए, दिन के 12 बजे मेरी पसंद में, दिन के 2:45 पर फिल्म संगीत में सुनेंगे एक ही फनकार को, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत में, शाम 7:40 पर फिल्म संगीत में, और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग भाग 109।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

अभी आपने श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग सुना, भाग 109। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। चमोली की नीति घाटी में कल से दो दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन होगा। सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। और हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में संचालित राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एक माह के भीतर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि नई नियमावली लागू होने के बाद उन अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण का मार्ग प्रशस्त होगा जिनकी प्रबंधन समितियां शासन को राजकीयकरण के प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण को लेकर कुछ मामलों के न्यायालय में लंबित होने के कारण वरिष्ठता और अन्य लाभों से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। ऐसे में पारदर्शी और व्यवहारिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली में विद्यालय की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व, छात्र संख्या, कार्मिकों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता तथा सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय

0: कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 के समापन कार्यक्रम में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों, अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ फसल की तैयारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2026 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा बीज, खाद और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, इसलिए सरकार क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उर्वरकों की खपत कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना और नमामि गंगे योजना के माध्यम से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत है। वहीं जैविक उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर 337 जैविक आउटलेट स्थापित किए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से किसानों की उन्नति और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई दिशा मिलेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: देहरादून के दून विश्वविद्यालय में कल अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमी मिड टर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथोपिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान समकालीन वैश्विक चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत तथा विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं ब्रिक्स उप शेरपा शंभू अलहक्की ने किया। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रही, जो वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की केंद्रीय थीम है। सम्मेलन में हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए तथा सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में उत्तराखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शिक्षाविदों तथा शोधार्थियों ने भी सक्रिय भागीदारी की। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर और SBI RCT में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेनदेन और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में प्रतिभागियों की KYC की अनिवार्यता, रीKYC प्रक्रिया, केंद्रीय KYC और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा फर्जी कॉल, मैसेज और संदिग्ध लिंक के माध्यम से होने वाले साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: चमोली जिले की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। आयोजन में भारतीय सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सेना द्वारा आवास, चिकित्सा सहायता, मार्ग सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं में सहयोग दिया जा रहा है, जिससे प्रतियोगिता का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस आयोजन से स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके चलते होम स्टे, परिवहन, भोजन और गाइड सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और प्रतिभागियों के साथ साथ स्थानीय समुदायों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सड़कों की मरम्मत और सड़क सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांवड़ मेले से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अधीन आने वाली सभी सड़कों पर पेचवर्क और मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदन मार्दंड का प्रकाशन शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने और जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्ष, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सफल पत्रकारिता की पहचान है और ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रभावी माध्यम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। चमोली की नीति घाटी में कल से दो दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन होगा। सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। और हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं जीवन चंद्र आर्या।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन चंद्र आर्या के गाए कुमावनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जीवन चंद्र आर्या के गाए लोकगीत।

0: जीवन चंद्र आया के गाए इसी कुमावनी लोकगीत के साथ हमारा आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन

0: कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे

0: ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में सिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है।

0: अभी आपने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग ललित में गा बांसुरी वादन सुना। आपके साथ तबले पर संगत की थी अनिंदो चटर्जी ने और बांसुरी पर रूपक कुलकर्णी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की। सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट एंड सिमिलरली फॉर क्रूड आल्सो वी आर वर्किंग।
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नवीनतम परिवर्तन करना है और अपात्र नामों को हटाकर सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल आंध्र प्रदेश के वस्त्र हथकरघा हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की विभिन्न पहलों और विकास पहलुओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वस्त्र मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड और संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री सिंह ने वस्त्र और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6

0: चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार में गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवा संस्कृति और विरासत का भव्य संगम है, जो दुनिया को भारतीय आतिथ्य सत्कार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर के साथ। मौसम में श्रोताओं आज एक अलग सी खनक है, और जब मौसम इतना सुहावना हो तो दिल खुद ब खुद गुदगुदाने लगता है, लेकिन अकेले गुनगुनाने में वो मज़ा कहाँ जो अपनों के साथ मिलकर महफिल सजाने में है। सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम पूरी तरह से आपका है, आपकी यादों का है और आपके उन जज्बातों का है जिन्हें आप गानों के ज़रिए बयां करते हैं। आज मेरे पास खतों का, ईमेल्स का और व्हाट्सएप मैसेजेस का एक पूरा पिटारा है, जिसमें देश के कोने कोने से हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमों की गुजारिश की है। कोई अपनी पहली मोहब्बत को याद कर रहा है, तो कोई पुराने दोस्तों की महफिल को मिस कर रहा है, कोई अपने अजीज़ के लिए गाना बजाना चाहता है, तो कोई बस यूँ ही इस सुबह का जश्न मनाना चाहता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत, आप सबकी नजर।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आपने सुना निकाह फिल्म से सलमागा की आवाज़ में हसन कमल के लिखे बोलों को सरगम में बांधा था रवि ने। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहां, डब्लू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम, उल्लाह अक्रम, राजनाथ गांव से याकूब, यूसुफ इमरान और इरफान, रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। इसी गीत को सुनना चाहते थे मोहल्ला हलवैया शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी खान, बिट्टू और हसीन कौसर। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और साइना निवान। आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगला फरमाइशी गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है रवि ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पटेल, राजदीप, राजी राजेश, शीतल राजेश, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार, धनजे, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद, नांदुरा बुलडाड़ा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ, रक्षा, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति चौधरी और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

आपको सुनवा रही हैं वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं नर्मदा पार मंगलवेड़ा से आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव रिधान खुराना। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू सिक्का। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमिन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत फिल्म नील कमल से। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत निर्देशन किया है रवि ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन बेगम, इशरत मुजम्मिल, हुमैरा सुमैरा, अबीहा शाहीन, नूरी बच्चू शेख, चीना शेख, पूनम कुमारी, अरहान हमजा, ममता रानी, आरिज, रुबीना वसीम। राजनगर मधुबनी से इस गीत को सुनना चाहते हैं कुशेश्वर, मौसम संगीता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि। लखनऊ से मुकेश रानी, कुसुम पंखुरी, पलक, मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, एमके गुप्ता, राज गुप्ता और विनीता गुप्ता। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपका गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत फिल्म आंधी से। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है R.D. बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं भूल चौड़ाहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल, राशिका, आकृति, वंशराज और MS अब्बासी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फरहाज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार, छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्र सेन की। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया गीत फिल्म निशान से। गुलशन बावरा के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है राजेश रोशन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं अंबाला चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयबा, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता, सहारनपुर से एस के नारंग, आशा नारंग, पतिक, सोनाली और कृष्णा, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, बिहारी कॉलोनी डोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, वली डोम, मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

इसी गीत को पसंद किया भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और हर्ष आहूजा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार।

श्रोताओं, फरमाइशों का पिटारा अभी आधा भी खाली नहीं हुआ है और आप सबके मैसेजेस लगातार आ रही हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मिलेंगे आपसे चंद और फरमाइशी गीतों के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला

0: प्रोत्साहन, साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत निर्झर में। तो लीजिए, पेश है लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में रजिया सुल्तान फिल्म का गीत। गीत लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत दिया है खयाम ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रदीप मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभेंद्र बजाज, बिट्टू बजाज, साहिल, छत्रपति संभाजी नगर से इस गीत के लिए फरमाइश आई है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, अंशुमन अनारकली।

शुभेंद्र बजाज, बिट्टू बजाज साहिल, छत्रपति संभाजी नगर से इस गीत के लिए फरमाइश आई है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, अंशुमन अनारकली बाजार जलगांव से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, आशीष मनहोत्रा, बेबी गव्या और सुच्चा पाठक। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

थोड़ा सा उल्लास, थोड़ी सी बारिश। तो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, मंजिल फिल्म से। योगेश के लिखे गीत को संगीत से सजाया है R.D. बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहती हैं मुंबई से श्रीशा, सात्विक, समित, दीपक और शशि आर्या। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान जीतेंद्र, एयरपोर्ट नगर, वंदना नगर इंदौर से वंदना मराठे, देविका चौधरी, संजना मालती, ताजपुर मोरवा से सीमा, मीना, पुंजराज, आरती, आकर्षण, रिपिंकी, रिंकी, रितु, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर आपका गीत।

उफ, इस गाने ने तो सीधे दिल को पार कर दिया है। आंखें थोड़ी नम जरूर हुई, लेकिन जनाब जिंदगी का नाम ही है हर पल को मुस्कुरा कर जीना। तो चलिए माहौल के सन्नाटे को तोड़ते हैं और लाते हैं इस सुबह में थोड़ी सी मस्ती।

श्रोताओं, कहते हैं पुरानी यादें उस इत्र की तरह होती हैं जिनकी खुशबू कभी कम नहीं होती, और जब बात आपकी फरमाइश की हो तो महफिल और भी ज़्यादा महक उठती है। तो आइए शामिल करते हैं अगला फरमाइशी गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, पारस मणि फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। फारूक कैसर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं नारुंगढ़ रोड्स मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक, पुटानी चौक नरहन स्टेट से लल्लन अमन बेबी, बरकाना से अफजल शाहीन, सोनू तस्नीम अफजल इब्राहिम, और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंगल जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक। तो लीजिए आप

श्रोताओं, वक्त की एक बहुत खूबसूरत आदत है, ये कितनी भी तेज़ी से भागे लेकिन जाते जाते कुछ हसीन यादें दे जाता है। और आज की सुबह आपके खत, आपकी फरमाइशें और ये प्यारे प्यारे मैसेज एक खूबसूरत याद है। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है मुझे आपसे विदा लेने की। आप अपनी फरमाइशें, अपना प्यार, अपनी प्रतिक्रिया यूं ही हमें भेजते रहिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो इसी गीत के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में चंद फरमाइशी नगमों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।

अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लयान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ऊ मिन आउं लयान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। उड़ीसा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश में सुनिए जगजीत सिंह की गई गजल।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए सबरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनते हैं जगजीत सिंह की गायी गजल।

इसी गजल के साथ हमारा आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे देहरादून केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले की यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था को शीघ्र सुव्यवस्थित किया जाए ताकि स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पिथौरागढ़ पहुँच रहे हैं। ऐसे में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाए तथा यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जाम की स्थिति वाले स्थानों की पहचान कर वहां बेहतर यातायात प्रबंधन किया जाए, साथ ही सड़क किनारे अनियंत्रित पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इस दौरान अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 आवासों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आवासों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इनका लोकार्पण कर पात्र लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना अंशदान जमा नहीं किया है उनसे शीघ्र धनराशि जमा कराकर आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सचिव ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य और कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास पर प्राधिकरण कार्यालय की प्रगति की भी समीक्षा की। देहरादून जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता और त्रुटि रहित ढंग से पूरा किया जाए। देहरादून में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नामों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजरों को व्यापक प्रशिक्षण देने तथा राजनीतिक दलों के सहयोग से प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को भी कहा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 7 जून तक गणना प्रपत्रों की छपाई और कार्मिकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का विवरण और संकलन करेंगे। इसी अवधि में नए पोलिंग बूथों को शामिल करते हुए बूथों का अंतिम निर्धारण भी किया जाएगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है, जबकि 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। देहरादून में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, ग्रामीण नैनो उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस संचय योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखंड और लीड बैंक देहरादून के सहयोग से किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एनपीएस संचय योजना की जानकारी देना और वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय रहते

0: से निवेश शुरू करने के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान पीएफआरडीए के अधिकारियों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ निवेश प्रक्रिया और दीर्घकालिक बचत के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, एसएलबीसी उत्तराखंड, लीड बैंक देहरादून और आरसीटीआई के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैंकों के अधिकारी, किसान, एफपीओ सदस्य, नैनो उद्यमी, जनसेवा केंद्र संचालक और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य शामिल हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सुर बहार।

सभी श्रोताओं को विभु कृष्णा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक ही कलाकार में हम सुनाएंगे आपको हिंदी सिनेमा के बेहद प्रसिद्ध पार्श्व गायक के चंद गीत। हिंदी सिनेमा में कई गायक आए और गए, किसी की आवाज में मस्ती थी तो किसी की आवाज में दर्द, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जिसमें ठहराव था, जिसमें एक अजीब सी कशिश थी, और जब वो आवाज गिटार के तारों से छनकर हमारे कानों में पड़ती थी तो रूह तक सुकून उतर जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गजल और पार्श्व गायन के बेताज बादशाह भूपेंद्र सिंह जी की। भूपेंद्र जी की आवाज में जो भारीपन और मखमली एहसास था वो सीधे दिल पर दस्तक देता था। गुलजार साहब की शायरी और मदन मोहन या आर डी बर्मन साहब का संगीत, जब इनके साथ भूपेंद्र जी की आवाज मिलती थी तो इतिहास बन जाता था। चलिए आगाज करते हैं साल 1975 की फिल्म मौसम के उस सदाबहार गीत से जो आज भी हर तन्हा दिल की धड़कन है। गुलजार साहब के बोल, मदन मोहन जी का संगीत और भूपेंद्र जी की आवाज़।

जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में बैठकर इस गीत के बोल, इस गाने की एक एक लाइन आंखों के सामने एक मंजर सा खींच देती है। भूपिंदर जी सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं थे, बल्कि वो एक लाजवाब गिटारिस्ट भी थे। आर डी बर्मन के कई सुपरहिट गानों में जो गिटार आप सुनते हैं वो असल में भूपिंदर जी ने बजाया था। कहते हैं जिंदगी में सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमी अधूरी रह जाती है। इसी फलसफे को बयां करता फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का एक ऐसा गीत जिसे भूपिंदर जी ने अपनी रूह से गाया है, निदा फाजली साहब के लिखे बोल और खयाम साहब का संगीत। सुनिए और महसूस कीजिए इस आवाज की गहराई को। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

नगमी। आज भूपिंदर सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी संगीत की महफिल सजेगी उन्हें शिद्दत से याद किया जाएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजार के उस अमर गीत को, जो मानो खुद भूपिंदर जी हमसे कह रहे हों। खयाम साहब की धुन पर सजे इस गीत को सुनते हैं और याद करते हैं उनको।

सच है कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। भूपिंदर सिंह जी की आवाज़ की यही खासियत थी। वो उदासी में भी एक अजीब सा सुकून घोल देते थे। उनकी आवाज़ अकेलेपन की साथी थी। श्रोताओं, वक्त अपनी रफ्तार से गुजर जाता है। इंसान चले जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाती है उनकी यादें और उनके गाने।

वक्त की रेत हाथों से कब फिसल जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो मैंने और आपने मिलकर महफिल सजाई थी और अब घड़ी की सुई कह रही है विदा लेने का वक्त करीब है। भूपिंदर सिंह की आवाज़ में जो ठहराव था वो हमें सिखाता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहरना कितना ज़रूरी है। उनकी यादों के नाम आज का ये कार्यक्रम रहा, उनके नगमों के नाम ये कार्यक्रम रहा। उम्मीद है इस मखमली आवाज़ ने आपके दिल के किसी कोने को ज़रूर छुआ होगा। चलते चलते गुलजार साहब की वो लाइनें याद आ रही हैं जो इस शहर की भीड़ में हमारे अकेलेपन और हमारी मोहब्बत दोनों को बयां करती है। ढूंढते हैं बेघर दर बदर ठिकाना, इस शहर में अपना कोई घर बनाना। इस बड़े से शहर में भीड़भाड़ और कंक्रीट के जंगलों के बीच अगर कोई अपना मिल जाए तो ये शहर भी अपना सा लगने लगता है ना? तो आइए कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाज़ों में ये गीत।

फिल्म घरौंदे के इस लाजवाब अमर और रूहानी नगमे के साथ अभी आपने भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाज़ में ये गीत सुना, और इसी के साथ हमारा आज का सुरबहार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। उम्मीद करते हैं आप इसका आनंद लिए होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। फौजी भाई सुने अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

एलओसी कारगिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लुटेरा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोलों को सरगम में बांधा है अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत सुनिए, अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से सोहम, राणा मजुमदार और आशीष पंडित की आवाजों में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत निर्देशन किया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए आक्रोश फिल्म का गीत जावेद अली की आवाज में। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित कुमार गंधर्व का राग अहिर भैरव में गाया ख्याल।

पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग अहीर भैरव में ख्याल अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजु पांगते का स्नेहिल नमस्कार। श्रोतों, यूं तो फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने विविध कलाकारी के दम पर या किरदारों के दम पर और अपनी प्रतिभा का उन्होंने खास परिचय दिया है, और उन्हीं में से एक सशक्त प्रभावशाली अभिनय के जरिए अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के माध्यम से हम सभी के बेहद चहेते कलाकार का नाम है परेश रावल। आज परेश रावल जी को हम खास तौर पर याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो 30 मई परेश रावल जी के जन्मदिन की उन्हें हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आज का मेरी पसंद उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के चंद नगमों से सजा है।

श्रोताओं, 30 मई 1950 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्म हुआ जाने माने मशहूर अभिनेता परेश रावल का। यूं तो गुजराती परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता का नाम दहियाल रावल और माता का नाम धनलक्ष्मी रहा है। और जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता मुंबई शिफ्ट हो गए थे। परेश रावल जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा मुंबई से ही की और मुंबई के नरसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य की उन्होंने पढ़ाई की। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे उसी दौरान उन्हें थिएटर और अभिनय में उनका शौक जगा और वहाँ जितनी भी गतिविधियाँ हुआ करती थीं वो उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते थे। यही समय था जब उन्होंने अभिनय को गंभीरता से अपनाने का फैसला किया और मंच प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने अभिनय कौशल को वो धीरे धीरे विकसित करते चले गए।

तो श्रोताओं, परेश रावल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट के रूप में की थी और इसी बीच उनकी बैंक में नौकरी लग गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ ही दिनों में ये नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान था वो थिएटर की तरफ था, फिल्मों की तरफ था। और जब थिएटर में वो काम कर रहे थे, इसी बीच उन्हें मौका मिला फिल्मों में आने का। और फिल्मों में जब उन्होंने किस्मत आजमाई तो फिर पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। अपनी दमदार अदाकारी के दम पर परेश रावल जी इंडस्ट्री के बड़े स्टार बन गए। और इनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो साल 1993 में फिल्म सर और 1994 में फिल्म छोकरी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला।

0: परेश रावल को सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली वो फिल्म थी हेरा फेरी। हेरा फेरी में उन्होंने एक कॉमेडी रोल किया था और साल 2000 में प्रदर्शित इस फिल्म में परेश रावल ने बाबूराव गणपत राव आपटे उर्फ बाबू भैया का रोल निभाया और वो फिर इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: पैसा, अरे मने मने लगता है अपना भी टाइम फाइन है भाई।

श्रोताओं, परेश रावल हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में खलनायक, हास्य अभिनेता, चरित्र अभिनेता और गंभीर भूमिकाओं में शानदार अभिनय कर अपनी खास पहचान बनाई है। साल 1980 के दशक से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर आज भी सक्रिय है। उन्होंने शुरुआती दौर में अर्जुन, नाम, शिवा जैसी फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में वो ज़्यादातर विलन के रूप में ही नज़र आए और 1990 के दशक में उन्होंने कई यादगार विलन की भूमिकाएं निभाई, जिनमें सर, मोहरा, दिलवाले और राजा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। और 1993 में आई उनकी फिल्म सरदार में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई, जो कि उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में एक मानी जाती है और इस फिल्म को वो बहुत खुद भी पसंद करते हैं। और इस फिल्म में उन्होंने एक गंभीर और सक्षम अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई और एक पहचान उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उन्हें इस फिल्म के ज़रिए पहचान मिली। इसके अलावा संजू फिल्म में भी उन्होंने अपना एक दमदार किरदार निभाया और दर्शकों के बीच वो बेहद पसंद किए गए।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो श्रोताओं, संजू फिल्म की बात की हमने आपसे। संजू फिल्म संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म में उनके पिता यानी सुनील दत्त के किरदार के रूप में नजर आए थे परेश रावल और अपनी दमदार अभिनय क्षमता के दम पर ये फिल्म में उन्होंने अपनी खास पहचान भी बनाई।

परेश रावल ने अपने फिल्मी करियर में विविध किरदारों को एक नए आयाम दिए और पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना की बात करें तो इस फिल्म में उन्होंने एक हिजड़े की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उन्होंने उनकी ज़िंदगी कितने संघर्षों से भरी रहती है, कितनी उनकी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, इस दर्द से किस तरह उन्हें दोचार होना पड़ता है, इस पीड़ा को अपने किरदार के माध्यम से उन्होंने तमन्ना फिल्म के ज़रिए बखूबी निभाया।

श्रोताओं, साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी में उनका किरदार बाबूराव गणपतराव आपटे भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमिक पात्रों में शुमार है। इसके बाद कॉमेडी का एक स्वर्णिम दौर परेश रावल की जिंदगी में आया, फिर हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला, मालामाल वीकली, छुप छुप के भागम भाग और वेलकम जैसी फिल्मों में उन्हें कॉमेडी के बादशाहों में शामिल किया गया।

तो श्रोताओं, परेश रावल जी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी मिस इंडिया और मॉडल रह चुकी स्वरूप संपत हैं। साल 1979 में मिस इंडिया का उन्होंने खिताब जीता और पहली मुलाकात स्वरूप संपत से साल 1975 में एक फंक्शन में उनसे हुई और अपनी पहली मुलाकात में स्वरूप संपत को दिल दे बैठे और बाद में उन्होंने विवाह करने का मन बनाया और काफ़ी मशक्क़त के बाद साल 1987 में उनका विवाह हुआ और इस विवाह के बाद उनके दो बेटे हैं, आदित्य और अनुरुद्ध। ये तो हुई उनकी निजी ज़िंदगी की बात। उन्होंने फिल्मों के अलावा राजनीति में भी भूमिका निभाई। साल 2014 से 2019 तक अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा के वो सांसद रहे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो अध्यक्ष भी रहे। कई पुरस्कार उनके नाम हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको मिला सर और वो छोकरी के लिए, और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से 2014 में उन्हें सम्मानित किया गया।

तो श्रोताओं, कई गंभीर विषयों पर जो फिल्में थी उनमें भी उन्होंने बेहतरीन किरदार निभाए हैं। चाहे ओ माय गॉड हो, टेबल नंबर 21, संजू, उरी और कई फिल्में हैं और भी जिसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं। और सरदार का वल्लभ भाई पटेल, ओएमजी का कांजी मेहता और हेरा फेरी फिल्म का बाबूराव, तीनों ही किरदार एक ही अभिनेता द्वारा निभाए गए और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

तो श्रोताओं, बलराज साहनी नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी को अपना आदर्श मानते हैं। परेश रावल, उनका मानना है कि अभिनय की दुनिया बहुत ही दिलचस्प होती है और एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। कई किरदार हम निभाते हैं और वो फिल्मों में ही संभव है। और अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के जरिए उन्होंने फिल्मों में भी अपने विविध किरदारों से हम सभी का खूब मनोरंजन किया है। कभी हंसाया, गुदगुदाया है तो कभी आंखें नम की हैं। एक बार फिर से परेश रावल जी को उनके जन्मदिन की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो यूं ही सक्रिय रहें फिल्मों में, थिएटर की दुनिया में, और जो भी वो ज़िंदगी में चाहते हैं उस मकाम तक ज़रूर पहुँचें। हमारी ओर से एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज बस इतना ही मेरी पसंद में। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम अर्पण।

स्वागत छू अपन सब नव कार्यक्रम अर्पण में। कार्यक्रम सुनने सवे दीपवाणी के प्रभा पांडे एक नमस्कार। देखो खत्म वे आपू और हमारे इंतजारी और हम ऐप पूछ गया कार्यक्रम अर्पण डिबेट। तो आपू सब स्वस्थ होने ला कुशल मंगल होने ला। बस हम लोग यही चाहूँ आपू सब इसके स्वस्थ कुशल मंगल रहो और आपू सब नव प्यार हमन का मिलते रहो। देखो हम मनखी ने हमेशा बटी प्रकृति है कुछ न कुछ सीखते रहो और सीखते ऐल रही। प्रकृति हमन के सीखे रखो कि हर चीज़ या न स्वच्छ और दगड़ में हर चीज़ या परिवर्तनशील छी। बखर दगड़ हर चीज़ बदलवे और हमन के यो सब यो प्रकृति है सीखण छी। दगड़ियो प्रकृति हमर सबन है ठूल मार्गदर्शक छी जो हमन के जीवनक अनमोल बात सीखें। यो सीखे हमन के धैर्य लगन और जरूरतक अनुसार जी। यह हमन के सब भली बात बताएं छी। वो यो कि सबने ठूल बात यो कि हमेशा सरल और सहज वर्णक व्यवहारिक तरीक और यस अगर हम सहज और व्यवहारिक वर्णु तो यह जीवन जीने सबन है ठूल कला छी। पेड़ हगाई डाउ बोट नदी मौसम कमैलक

कोई दबाव ना थी, बल्कि सब कुछ स्वाभाविक रूप चलो। नगर जो वास्तविक छो वी सुंदर छे। सहज जीने वाले जीवन में हमेशा हरियाली लहलाते रहे छे। सहज दगड़ियों यानी कि जीवन के सामान्य वह जंगल हम खुद के प्राकृतिक रूपल ढालने की आदत जो है वी हमन के सहज बढ़ सको। दगड़े जीवन इतुक मुश्किल नाते हम मन की जतुई के बढ़ते नहीं। जीवन एक सहजता कहीं हम नष्ट कर हला कि हम यह भ्रम में ज़्यादा जिनों की या दिखावों में जिन ज़्यादा भर या दूसरे शब्दों में कुत हमें जानने नाते कि यह पिछड़ की गलत छे। देखो सहज जीवन कसी हम जी सकनू यह एक लीजिए हमन के अपू आप के भीतर बटी जान जरूरी छू। मन जो हमन मनोवृत्ति छे उनन का मुक्त करण जरूरी छू। कि जीवन के उदासी है भैर कर खुशहाल करण अगर हम चाहूँ तो सहजता दगड़ जीवन जीवन सीखना हो। यही सहज जीवन का हमर मूल मंत्र लछो। कि दगड़ियो हम जो लछन जस लछन खुद के वी रूप में स्वीकार करूँ और वास्तविकता दगड़ जीवन जीने कला सीखूँ तो यही हम में एक सहज गुण छो। तो दगड़ियो कार्यक्रम में बातचीत अपू दगे और लोहल लेकिन पहले करना अपू मनोरंजन और सुनू योगी।

स्वागत है एक बार फिर अपू सब न योग कार्यक्रम में। बिगड़ आज के भागम भाग भरी जीवन में भल स्वास्थ्य बढ़ाई धरण बहुत जरूरी है। यकल जी हमन के अपू खान पीणक ले ध्यान दें बहुत जरूरी है, जबकि सही पोषक तत्व है हमारे शरीर में ये पोषक तत्व हो ये लोग बहुत हमन के ध्यान दें। बिगड़ हमारे रोजाना जो खान पीण रूप पौष्टिकता है वो भरपूर हो यह सबने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संतुलित आहार एक यस आहार है जो सारे शरीर के पोषक तत्व प्रदान करो। खान वो जमे प्रोटीन वसा विटामिन खनिज फाइबर सब कुछ शामिल हो, और खान पीण में मौसमी फल और साग सब्जी दगड़ दगड़े डालने होंगे तो दगड़ शरीर में पानी मात्रा यह चीज़ बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में पानी कमी नहीं हो, क्योंकि जब हम अपन स्वास्थ्य की अनदेखी करें तो हमें में कत को प्रकार शारीरिक कमजोरी ले जानी। एक लीजिए हमन के आवश्यक मात्रा में संतुलित आहार लेना जरूरी छो। हम अगर बात करें तो बहुत स्वास्थ्य अगर हमार होल बहुत शरीर अगर हमार होल तो तब हम स्वस्थ रहूँ और भली के अपन घरक घर परिवार और ननाक सब न हम ध्यान न दे सकूँ। तो दगड़ियो आज हम ले अपन कार्यक्रम में बातचीत करनो यही विषय पर कि आलू है बड़ी विभिन्न व्यंजन यह विषय पर हम ले रहे हैं आपू लीजिए एक क्षेत्र संकलित बातचीत। विषय छ आलू है बड़ी विभिन्न व्यंजन विषय पर श्रीमती भावना अलमार दगार करी गई यह हमारे क्षेत्र संकलित बातचीत। दगड़ियों उत्तराखंड खान पीण बहुत सरल और स्वाद हरी हूँ, यहाँ खान बनाना तरीक जतको सरल हूँ वी स्वाद ले उतु ज्यादा हूँ। हमारे दिव्य मंडलों में चाहे गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल सुंदर और स्वादिष्ट भोजन हमारे यहाँ बढ़ो। और खान पीण अगर हम बात करें तो खान पीण में सबने ज्यादा हमारे थाई में परोसे जाने वाला खान से हमारे साग पात हमारे यहाँ हर वक्त खाना कहे चाहे अब रत्ती को दोपहर को या ब्याल को हर वक्त खान में सबने महत्वपूर्ण हिस्से छो वो छो हमारे यहाँ साग पात। हम नाश्ता कर

0: या दिन अखाड़ या फिर रात, तीनों बखत यो हमारे थाई में परोसी जांच। दिन में बहात दगड़ जब हम लिनू तो यो सागर नामा बदल जाए, वो बखत इतने हम टपकी नामल जानो। साग पात स्वास्थ्य वर्धक तो छने छू, पौष्टिकता है भरपूर लच, उसी लिए हर साग पात में अपने एक अलग पौष्टिकता है। तो दगड़ियों साग सब्जी की हम बात करना लाग जाए, तो आज हम आपको कार्यक्रम में ले जैसे एक साग के बारे में बात करनो, जे बिना हमर हर साग अधूर छू। ये हमर घर में हर सब्जी दगड़ू छू, यानी कि यो आल जो कि हर घर घर में पाई जा। तो बात करनो आज हम यो आलू बार में, यो आल जगह कतको प्रकार बड़े बेर हम अपन भोजन में शामिल कर सकें। तो यही विषय पर बातचीत करना लीजिए। आज हम पहुँची आपू शहर अलमाड़ में और यह हमूल बात करी एक महिला दगड़ जो कि एक अध्यापिका लचन, जनर नाम छू श्रीमती भावना। भावना जी बहुत बहुत स्वागत छू आपू हमारे यो कार्यक्रम एपड़ में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: दीदी। हम कार्यक्रम में आपू दगड़ बातचीत कर ले, लेकिन वे है पहली थोड़ा मैं आपू बारे में जान चाहूँ।
1: दगड़ियों मेरे नाम छू भावना लटवाल, मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ू नू और दगड़ में एक घरेलू महिला लचू। जो तो काम हम भैर करनू वो तो कई काम हम घर भीतर ल करनू, मगर खानू बनाने मतलब बहुत शौक छू और खानू बनाने साथ साथ मैं अन्य जिम्मेदारी इनके लिए भली भांति निभा लेनू।
0: बहुत बढ़िया बात भावना दी आपुल कहे कि आपू हम महिला जो छिन जत को काम घरे भेर करनू वी है और लजादे काम हमार घर हूँ और उकुल हम बहुत भल ढंगल हम निभुनू। भावना दी आज हम बात करन लाग रही यो आलू बारे में कि यो आलू साग जो कि हर घर में ये उपलब्ध हो, तो मैं आपको जान जानू कि यो आलू बारे में या ये बारे में आपको की कौन चला।
1: आलू का सब्जियों राज कही जा जो सस्त होना साथ साथ गुणा खजान हो, ये में कार्बोहाइड्रेट विटामिन B6 पोटेशियम और महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाई जानी। यह ऊर्जा तो ज्यो ज्यो हम उनके दगड़ में हमारे पाचन त्वचा और हृदय लीजिए बहुत फायदेमंद। आलू एक साधारण और आम छू और महत्वपूर्ण छू। आम इसलिए उपलब्ध छू किले कि यो हर घर में हम उनको मिल जा आरामल, और महत्वपूर्ण इसलिए छू किले कि यो हर भोजन में हर सब्जी में शामिल छू। हर रसोई घर में आलू बिना कोई खाना बनाना बहुत मुश्किल छू। हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी या छुन जनर आलू बिना काम नहीं चलन, और उन सब साधन में आल हमारे किरण बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात भावना दी अपुन कहे कि यो सब्जी राज लेछे यो साधारण लेछे और आम लेछे किले कि यह बिना कोई सब्जी बड़े नहीं आती। तो भावना दी हम बात करने लग रही अपन शहर अलमाड़ में, और हम अगर पहाड़ खाने की बात करो तो ये आलू के पहाड़ खाने हम बड़े
1: हमारे जो सबसे ज़्यादा पारंपरिक खान छू वो छू आलू थेचू। जगह हम आलू थेचवाने लगूनी और यह बेहद हमार पारंपरिक खान छू।
0: दीदी आप बात करे आलू थेचवाने, तो ये कार्यक्रम माध्यम मैं अब तक यो जान जानू कि ये आलू जो थेचवान बढ़े यह विधि के हैं और इनको को तरीका बढ़ाई जाए।
1: सबसे पहले हम आलू को धोवे और छिलके सहित और इनके सिलवट में हम थेच सकनू, उमें हम मेथिले मिलावे पीस सकनू और मसाल हरी मिर्च छू मसाल छून इनका हम सब पीस दे। गाँव में जैसे हमारे नन नन नन नन आल निकल जानी उनका हम बिना छिली हुई बड़ा बेर तैयार कर सकनू आलू थिचवान, और यह स्वाद और ले बढ़ जाए हमारा खाना। हमार आधो से ज़्यादा खान जो छू लोहा कढ़ाई में बनूँ, इसलिए आलू थिचवान के लिए अगर हम लोहा कढ़ाई में बढ़ूँ तो ज़्यादा स्वादिष्ट हो। आलू थेचू के तैयार कर लीजिए। सबसे पहले हम लोहा कढ़ाई में हम सबसे पहले सरसों तेल खितून, इमें हम हींग कुटी हुई हरी मिर्च अदरक लहसुन और जीर और मेथी मिलाबेर हम इको छौकून आलू थेचू के अपोपू स्वाद हिसाब। इमें टमाटर ले खिसक छा और टमाटर अगर नी खितन चाना तो टमाटर हटा सक छा, और फिर इमें नमक हल्दी लाल मिर्च और धनी या सब्जी मसाला इमें खिस सकनू। इक हम थोड़ी देर पकोन देख लूँ कि यो पाक गो नहीं पक गए। जब यो थोड़ी सा पाक जलो इमें हम अपू स्वादा अनुसार थोड़ी

0: चावल इमें टमाटर लिखी सकता और टमाटर अगर नहीं खिता चाहना तो टमाटर हटा सकता और फिर इमें नमक हल्दी लाल मिर्च और धनी या सब्जी मसाला इमें खिस सकनू। इक हम थोड़ी देर पकोन देख लूँ कि यो पागो नहीं पक गए। जब ये थोड़ी सा पक जलो इमें हम अपु स्वादा अनुसार थोड़ी सा इमें गर्म पानी मिला सकनू और थोड़ी देर पक जलो तो मैं हरी धनी खिदबे गरम गरम भात दगड़ एक खाओ तो बहुत स्वादिष्ट लगू। एक हम रोट दगड़ ला खा सकनू। जिन लोगों के मूल पसंद छू तो आल दगड़ हम मूलन के लिए थेज बेर बढ़ा सकनू।
1: ये तो अपुल बता भावना दी हमको आलू थेचू या आलू थेचोने बारे में। हमारे पहाड़ पर आलू बड़े ले पहली बड़ी बहुत दिखे ए बखत हमारे घरों में खूब बढ़ाई जैसी तो मैं आपको यह कार्यक्रम माध्यम जान चाहू की ये आलू बड़े कैसे बढ़ाई जानी।
0: आलू को उबाल बेल बढ़ा सकनू। चाहो तो तुम कच्चे बढ़ाओ चाहे तुम उबाली बढ़ाओ।
1: तो उबली आलू का आपको बात करने लग रहा है भावना जी तो उबली आलू बड़े कैसे बढ़ने।
0: पहले हम आलन को उबाल लून और फिर उनको कद्दूकस कर दे उनमें मसाल और दाल मिला बेर या उड़द दाल या मूंग दाल मिला बेर नाना नान बड़ी बड़ा बेर इनका हम धूप में खींच सकनू और जब वे सूख जानी तो इनका हम आराम बना सक। उसी हमारे घर में पहली वे आलू का आलू बड़ी बना जा
1: आल एक और भी गुण अनेक।
0: आलू भरत और आलू चोखा एक का खान छू। आलू चोखा जो छू हम वो आलन को उबाल बे बना सकनू। उमे हरी मिर्च हरी धनी और कच्चे तेल मिला बेर उको गोला आकार में बड़ा बेर भात दाल दगड़ उको टक्की रूप में खा सकनू। और जो आलू भरत छू उको हम पैर जवान में लोग चूल में या सगड़ में घाव खिद बेर उको बड़ूछी और उको भैर निकाल बे फिर बाद में खिल बे जीरा नून खिद बे खाई जाछी जो हमारे स्वास्थ्य लीजिए बहुत बढ़िया छू। सगड़ में खिती जो आलू भरत छू वो हमारे पीलिया मरीजा लीजिए जो जतकाई सैनी हुनी पहली वे उन्हें लीजिए बहुत बड़ी हूँ।
1: बहुत बढ़िया बात भावना दी अपुल बताया ये आलू भरते बारे में जो कि तू स्वास्थ्य वर्धक ले छू। आल एक छू दीदी ये गुण अनेक छ। दीदी ये तो अपुल बता आल हमारे खान पीन में हर जाग के शामिल छी तो अगर हम एक और के काम आ ले सको।
0: ये तो हम उन पहली खाना बात करी अब हम आलू और फायदा बतूनू। जैसे हमारे शरीर में दांत खाज और खुजली है जाए एलर्जी होती है अगर हम कच्चे आल के घिस अगर हम उत्ती लगू ना तो हमार बहुत फायदेमंद हो दाग धब्बा और झाइयों लीजिए। अगर हम घर में ये उपाय करूँ कच्चे आल के पीस बेर अगर हम अपू चेहरा में लगून वो रस निकाल बेर अब मुख पर दाग धब्बा व झाइयों पर अगर हम लगून तो बहुत हद तक हमार त्वचा में चमक आ जाए और काफी हम उनको फैद हूँ। और रसोई में अगर काम करते करते कबत हमार हाथ जल जाए तो उत्तीला हम काचाल के घिसबेर लगा सकनू जो काफी फायदेमंद हूँ। अब वो चांदी पायल ले साफ करने में काफी मददगार हूँ। उबाली आला पानी में अगर हम अब चांदी पायल के थोड़ी देर लीजिए खींचती हूँ तो हमारे चांदी पायल काफी हद तक चमक जानी। और अगर हमारे भनन में कबत जंग लग जा कोई भनन में अगर हम उत्ती कच्चे आल रगड़बेर घिसबेर को साफ करनू तो हमारे भनकुन चमक जानी।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात भावना दी अपुल बताया कि जितको आल हमारे खान में स्वास्थ्यवर्धक छू उतको ये हमारे और कामों में हमन का ये हम उपयोग कर सकते।
0: प्रभा जी आल इतु शुद्ध चीज छू कि इका हम व्रत मेले उबाल बेर खा सकनू और दही मेले मिला बेर खा सकनू और मलाई मेले मिला बेर हम इका खा सकनू। चाहो तो तुम इमें घ्यू खिद बेर लुआ कढ़ाई में आलू हलू बना सकता जो काफी स्वादिष्ट हूँ। आलू हलू में फिर मलिबे हम काजू किशमिश बादाम खिद बेर ले आल का खूब फ्राई कर बेर बढ़ा सकनू जो काफी भल हूँ खान में और हमारे व्रत में काफी फायदेमंद। हमारे पहाड़ में आलू हलू व्रत दिन बहुत खाई जा।
1: यह कार्यक्रम माध्यम हमारे सुनने वाले श्रोता
0: हम सब ये जान लू की आल काफी फायदेमंद हूँ। खासकर आल जो हरी आल हूँ वो हम उन बिल्कुल नहीं खान चाहे और अंकुरित आल ले हम उन बिल्कुल नहीं खान चाहे जो हमारे शरीर के नुकसान करो। और आजकल बाजार में डिब्बा बंद आलू सामान बहुत मिलना लेकिन मैं सब उनको यही कहूँ कि घर में अगर हम यह सामान को बना लूँ तो ज्यादा हमारे शरीर को फायदेमंद हो और हमारे नातिन स्वस्थ रहल।
1: बहुत बढ़िया बात भावना दी अपुल का तो सुंदर जानकारी अपुल हमन के यो कार्यक्रम माध्यम दे तो दीदी ये लीजिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आलू से बने विभिन्न व्यंजन यो विषय पर श्रीमती बहाना लटवाल अलमार दगाड़ करी गई यह क्षेत्र संकलित बातचीत अपुल सुने तेरे वास्तव में आल एक छू वी गुण अनेक छे। हम इन्हें कतको रूपों में अपन भोजन में शामिल ले कर सकें लेकिन कुछ बातों का ध्यान हम जरूर दें। तो दगड़ियों कार्यक्रम में हम अखिल का वर्णों और कन्नों अपू

निरंजन और सुनो योगी।

स्वागत छू आपू फिर यह कार्यक्रम अर्पण में। देखो हम मन के एक तीन मूलभूत आवश्यकता छ, रोट, कपड़े और मकान। रोटा मतलब छे भोजन। देखो धरती पर जन्म लेने सब जीवन लीजिए यह भोजन की आवश्यकता छू। सब जीवों को यह खान पीन यह प्रकृति है मिले, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जी, दूध, दही, यह सब यह प्रकृति बटी मिले। तो यह लीजिए हमन के कभी न हो खाना का मनन स्वीकार करना चाहिए, खान चाहिए और कभी न खाना अपमान करना चाहिए। कि लेकिन अगर यो सब जीवों को अब आवश्यकता अनुसार भोजन खाना चाहिए, एकमात्र मन के ऐसे हो कि जो खाने का बर्बाद करो। भोजन बर्बादी दगड़ियों जलवायु परिवर्तन मतलब बहुत हुआ, क्योंकि 8-10% लगभग खाने की बर्बादी है। दगड़ियों हम सब जानो कि हमारे संस्कृति में जो छू अन्नक भोजन छी और उगो हमन के सम्मान देकर हम जतु हम उगो भूख छे आपको आवश्यकता अनुसार उतके अपन थाई में पसके जा छी। और ले अन्नक एक ले गुद बर्बाद निकरणक हमारे यहाँ नियम छी। लेकिन बदलते समय देकर आज हमारे रसोई में इतु खान पीन एक का दगड़ बढ़ जाए, इतु प्रकार बढ़ जानी कि हम थर थर ले लूँ तब ले हम उगो अपन खान में बचा दिन अपन थल में खान बचो। देखो भली बात ना थी यह लीजिए अगर ज़्यादा प्रकार ला हमारे रसोई में बढ़ी तो हम मई मन कहने फड़ फड़ जतू हमको भूख छू हम उतु कह उगो अपन थाई में परोसू। और अगर हम अपन खान अपन घर में हम यह नियम बढ़ लूँ तो खाने बर्बादी के रोकना लीजिए हम पैर कदम उठा सकें। और यह जागरूकता लच हो कि हम अपने घर में जो ला हमारे अंतिम छेन जो ला मन की हम अंधकार घर में रोनी हम उन्हें कले यो बात अगर समझो कि लेकिन देखो हमारे घरों में छोट छोट नमकीन हम जो खान पीन हम जब बढ़ो नो वह तो वो निखान और दूसर चीज़ों में बढ़ोने जीत कर लें। हम दूसर चीज़ ले उन्हें स्वाद अनुसार बढ़ो लेकिन जो चीज़ जब बढ़े वो कुल जरूर हम के अपने खाने में नाना कर खाने का आदत डालना चाहिए। जब जो बढ़ो ज़्यादा ना सही कम है लेकिन उकड़े हम अपने घर में सबका भान में पसको यह बहुत जरूरी है। कि लेकिन अन्न अपमान करण हम देख लो कि कत को यश लोग जो भूख छे छोट छोट बात छे हम इन ध्यान धरबे हम ले रगड़ियो इन बातों के ध्यान धरबे अन्न का बर्बादी है बचा सके। माठो माठो के बखत में आपू है विदा लेना कार्यक्रम में आगिन के आपू दगे फिर भूत प्रभा पांडे के दीवानुमति नमस्कार।

0: बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम में अर्पण। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। एक बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और 1:05 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के देहरादून के 5 मिनट हुए हैं। अब श्रोता के प्रादेशिक समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। और श्री केदारनाथ मंदिर में नई व्यवस्था के तहत सुगम दर्शन के लिए VIP श्रद्धालुओं को ₹1100 शुल्क देना होगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान हुई 4

0: अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: चमोली जिले के लुआनी गांव के पास आज सुबह लगभग 4 बजे एक इको वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा गया है। उधर अल्मोड़ा जिले में कल हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर के गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हवालबाग विकासखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग पर सुंदरपुर गांव से लगभग 8 किलोमीटर आगे बागेश्वर की ओर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास कल एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। बताया गया है कि गंगनानी से उत्तरकाशी की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। बचाव अभियान के दौरान एक महिला और एक पुरुष को मृत घोषित किया गया जबकि 3 घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी भेजा गया। इस बीच गंगोत्री धाम में गंगा घाट पर स्नान के दौरान एक महिला की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा है कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति यानी BKTC ने नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब सुगम दर्शन के लिए VIP श्रद्धालुओं को ₹1100 शुल्क देना होगा। BKTC के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगण ने बताया कि यह व्यवस्था यात्रा संचालन को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, खराब मौसम और लंबी कतारों की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चमोली जिले की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित ये प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का एक प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन के माध्यम से देश भर के लोग नीति घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से परिचित होंगे।
4: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है, जो UTDP के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और उनके लिए हमारे प्रशासन ने व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है और इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मराठी क्षेत्र को एक नई पहचान मिली।
0: पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि इस आयोजन के लिए सेना से समन्वय स्थापित कर सभी सुरक्षा के उपाय पूर्ण कर लिए गए हैं।
5: देखिए, अल्ट्रा मैराथन दौड़ जो हो रही है अपने आप में एक ऐतिहासिक और फास्ट ब्रेकिंग दौड़ है, जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र में लद्दाख के क्षेत्र में इस प्रकार का पहले दौड़ हुआ करती है। ये उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसमें इस तरह के वाइब्रेंट विलेज है हमारे, उनके लोगों को बीच में जोड़ना। पुलिस के स्तर पर जो कार्रवाई इसमें हो रही है, पहला तो डीएम साहब के माध्यम से सभी विभागों के साथ हमने समन्वय स्थापित किया है।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर देता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने तथा जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सफल पत्रकारिता की पहचान है और ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम भी है। अल्मोड़ा जिले में स्थित सेना मुख्यालय में आज 282 अग्निवीर शानदार परेड के साथ भारतीय सेना के अंग बने। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। अग्निवीरों ने आर्मी बैंड की धुन पर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की स्वर लहरियों के बीच पासिंग आउट परेड में मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने जवानों का हौसला बढ़ाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को पदक देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की सरहदों की सुरक्षा में KRC से प्रशिक्षण लेकर वीर सैनिक जुटे हैं, जो पूरे कुमाऊं के लिए गौरव की बात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। और श्री केदारनाथ मंदिर में नई व्यवस्था के तहत सुगम दर्शन के लिए VIP श्रद्धालुओं को ₹1100 शुल्क देना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: पेश है फिराक गोरखपुरी का कलाम, आवाजें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

0: वीवा सिस्टर्स की आवाज़ों में जावेद अख्तर का गीत अभी आपने सुना और इसी गीत के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आज प्रस्तुत है श्री विजय राजे के मूल मराठी नाटक एक होता का हिंदी अनुवाद। लीजिए सुनिए नाटक एक था।

0: विश्राम, ये क्या हो रहा है?
1: रियाज, रियाज कर रहा था सुनीता, मन बहलाने के लिए। हारमोनियम तो अब बजा नहीं सकता, अब तो रह गया है सिर्फ गाना।
0: रोज रोज वही बात।
1: फिर भी सुनीता,
0: मैं ऑफिस जा रही हूँ।
1: ऑफिस? लेकिन अभी तो 8 ही बजे हैं।
0: उर्मिला के घर जाना है, वहाँ से ऑफिस जाऊंगी।
1: लेकिन सुनीता,
0: देखिए आपके लिए खाना तैयार करके रख दिया है और नाश्ता भी।
1: तुमने खाना नहीं खाया?
0: मुझे इतनी जल्दी खाना पसंद नहीं, जानते नहीं, मैं बाहर ही खा लूंगी।
1: फिर भी
0: देखिए, मेरे बाहर जाते समय आप यूं मुंह ना बनाया करिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं।
1: लेकिन सुनीता, क्या उर्मिला के यहाँ जाना जरूरी है? कल ही तो तुम उसके यहाँ गई थी।
0: तो क्या हुआ, अगर आज भी चली जाऊं तो अपराध होगा क्या?
1: सुनीता, तुम झूठ बोल रही हो।
0: विश्राम।
1: हाँ सुनीता, पिछले 15 दिन से तुम उर्मिला के घर गई ही नहीं। पिछले 15 दिनों से तुम घर भी देर से आ रही हो।
0: काम जो रहता है, ऑफिस का और घर का भी।
1: सुबह भी जल्दी निकल जाती हो।
0: कह तो दिया।
1: अच्छा जाने दो। सुनीता, आज की छुट्टी ले लो।
0: और क्या करूं?
1: घर में रहो मेरे साथ।
0: घर में?
1: हाँ, हम बातें करेंगे
0: दिन भर।
1: मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है सुनीता।
0: सॉरी विश्राम, आज मुझे ऑफिस जरूर जाना है और जल्दी जाना है।
1: सुनीता, तुम जब मेरे नजदीक होती हो तो बहुत अच्छा लगता है।
0: लेकिन मेरे पास फालतू समय नहीं है, नौकरी जो करनी है। देखो विश्राम, 8:30 तो यहीं बज गए और मैं लेट हो गई हूँ। और हाँ, शायद शाम को
1: आने में देर होगी, यही ना?
0: हाँ,
1: यानी रात होगी।
0: टेढ़ी बातें क्यों करते हो?
1: क्योंकि तुम्हारा बर्ताव सीधा नहीं है।
0: मैं जा रही हूँ।
1: सुनीता, आखिर चली ही गई। चलो विश्राम। कौन? अंदर आ जाओ। अरे उर्मिला, तुम
2: कैसी हो? विश्राम, क्या हो रहा है?
1: होना क्या है उर्मिला, कुछ भी तो नहीं।
3: सुनीता क्या कर रही है?
1: ऑफिस गई है।
3: ऑफिस इतनी जल्दी?
1: पहले अपनी किसी सहेली के यहाँ जाएगी और वहां से ऑफिस।
3: और खाना?
1: उसकी सहेली का नाम नहीं पूछा तुमने?
3: तुमने खाना खाया विश्राम?
1: रात भी वो देर से आने वाली है।
3: मैं पूछती हूँ, तुमने खाना खाया?
1: उर्मिला, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या?
3: विषय मत बदलो विश्राम।
1: वही प्रश्न है और वही उत्तर। पिछले 15 दिनों में इन प्रश्नों में कुछ फर्क हुआ है क्या?
3: सुनीता को कुछ कहा नहीं तुमने?
1: क्या कहूँ उर्मिला, हर एक बात कहकर तो समझाई नहीं जाती।
3: लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा विश्राम?
1: उसका निर्णय करना मेरे हाथ में नहीं।
3: लेकिन लेकिन तुम्हें ये जो असुविधा हो रही है।
1: अंधे की गायों का भगवान ही रखवाला होता है।
3: दुष्ट जनों को रास्ते पर लाने वाला भी तो भगवान ही है।
1: जाने दौर में, मुझे तो आश्चर्य इस बात पर है कि तुम रिश्ते में मेरी कुछ भी नहीं लगती, फिर भी मेरी इतनी चिंता करती हो, इतना ध्यान रखती हो।
3: मेरी जगह कोई भी स्त्री होती तो वो भी
1: नहीं। उर्मिला नहीं, मैं ये नहीं मानता।
3: विश्राम, मुझे सुनीता के व्यवहार पर आश्चर्य होता है।
1: लेकिन उसका भी क्या दोष है उर्मिला, हमारी शादी हुए जैसे तैसे अभी 2 वर्ष ही तो हुए हैं, और फिर यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के, और बिताना पड़ रहा है उसे ये नीरस जीवन।
3: हंसी खुशी ही तो जीवन का लक्ष्य नहीं है विश्राम, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है मानवता।
1: मानवता?
3: हाँ।
1: मानवता तो तभी होगी उर्मिला जब घर में मानव रहेंगे। ये सारा घर ही मनुष्य रहित हो गया है। देखो देखो इस घर की क्या दशा हो रही है। एक्वेरियम सूखा पड़ा है। कुछ दिन पहले उसमें जीवित मछलियां थी, सुंदर, कई रंगों की, कहां गई सब? मर गई, क्योंकि उन्हें अन्न नसीब नहीं हुआ। मैं रोज सुनीता को याद दिलाता था, लेकिन 15 दिनों में एक दिन भी सुनीता को समय नहीं मिला मछलियों को खाना लाने।
3: शांत हो जाओ विश्राम।
1: जब मछलियां थी उर्मिला,

0: तब हमें उनकी क्रीड़ा देखने के लिए समय ही नहीं मिलता था। नौकरी जो थी, एक होनहार इंजीनियर विश्राम को अपना कैरियर बनाना था, कैरियर अपनी कंपनी खोलनी थी, अपना भविष्य बनाना था।
1: विश्राम,
0: मनुष्य आशा पर ही तो जीवित रहता है। जब भविष्य के सपने देखने की मेरी शक्ति नष्ट हुई तो जाने दो। और फिर सुनीता की जगह और कोई स्त्री होती तो शायद वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करती।
1: नहीं विश्राम, तुम्हारा ये सोचना गलत है। खैर जाने दो, तुमने भी खाना तो नहीं खाया ना?
0: नहीं।
1: ठीक है, मैं परोस कर लाती हूँ।
0: नहीं, मुझे भूख नहीं है।
1: तुम इतनी जिद क्यों करते हो?
0: उर्मिला, अभी तक मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया, नहाया भी नहीं।
1: ओह, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो जल्दी करो, मैं तुम्हारा मुंह हाथ धुला देती हूँ।
0: नहीं उर्मिला, मुझे क्या अधिकार है कि मैं तुम्हें इस तरह कष्ट दूं?
1: तुम्हारी कोई छोटी बहन होती तो?
0: उर्मिला,
1: चलो अभी तुम्हें तैयार करा देती हूँ।
0: लेकिन तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी।
1: वो मैं देख लूंगी। उठो और तैयार हो। अब अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, मैं जाती हूँ। ऑफिस से लौटूंगी तो तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। अब तुम थोड़ी देर आराम करो।
0: अच्छा।
1: बाय
0: बाय। ये है स्त्रियश्चरितम्। चरित्रम नहीं, चरितम अर्थात आचरण, व्यवहार। ये स्त्रियश्चरितम् अत्यंत गूढ़ है। एक वर्ष पहले सुनीता ऐसी नहीं थी, प्रसन्न थी, उदास नहीं थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है। मेरे प्रति लापरवाह हो गई है, उसका सारा आचरण ही विचित्र हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो मन से यहां नहीं, कहीं और है। लेकिन ये कैसे संभव है? शायद मेरे मन की कल्पना है। मेरे सोचने में सचमुच कुछ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैं सुनीता को गलत समझ रहा हूं। हाँ, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं।
2: कौन? आइए, अंदर आ जाइए।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: विश्राम इनामदार आप ही हैं?
2: जी हाँ, बैठिए। मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: स्वाभाविक ही है, हमारी ये पहली मुलाकात है।
2: मुझे आश्चर्य हो रहा है।
3: किस बात पर?
2: आप जैसे अपरिचित व्यक्ति को मेरे जैसे आदमी से कुछ काम हो सकता है?
3: मुझ जैसे? यानी?
2: आपका शुभ नाम?
3: रंजन, रंजन देशपांडे।
2: मिस्टर रंजन, पिछले एक साल से बाह्य जगत से मेरा संबंध करीब करीब टूट चुका है। इसके अलावा मैं अपंग हूं, फिर भला आपको मुझसे क्या काम हो सकता है?
3: जब मैं आपके पास सीधे आ पहुंचा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ही।
2: आगे कहिए।
3: हो सकता है मैं आपकी इसी स्थिति से कुछ लाभ उठाना चाहता हूं।
2: मैं समझा नहीं।
3: बात तो साफ है, आपने खुद स्वीकार किया है कि आप अपंग हैं। मैं आपकी स्थिति का लाभ उठाकर अगर आपकी कोई मूल्यवान चीज उठा ले जाऊं तो?
2: इस तरह चेतावनी देकर?
3: जी हाँ, चेतावनी देकर।
2: मिस्टर रंजन, मैंने अपने हाथ गंवा दिए तो क्या हुआ? मेरे पांव और गला दोनों सशक्त हैं। मैं आपका पीछा कर सकता हूँ, शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, आपको बदनाम कर सकता हूँ।
3: एनीवे, फॉरगेट इट। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं रंजन देशपांडे हूँ, विक्रमी टेक्सटाइल के अकाउंट्स विभाग में हूँ।
2: ओह आई सी, यानी हमारी सुनीता के ऑफिस में हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक।
2: लेकिन आप यहाँ आने वाले हैं ये सुनीता को मालूम नहीं था क्या? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया।
3: नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं, मैं अचानक आया हूँ।
2: सुनीता कह गई थी आज लौटने में देर हो जाएगी।
3: आपको गपशप करना पसंद नहीं?
2: लेकिन मैं आपसे किस विषय पर बात करूं?
3: किसी पर भी, राजनीति, समाज सेवा, देश की आर्थिक स्थिति।
2: आई एम सॉरी मिस्टर रंजन, मुझे किसी भी विषय में कोई दिलचस्पी नहीं।
3: तो आप अपने बारे में बताइए, आपके साथ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ?
2: इंटरव्यू लेने आया।
3: यही समझ लीजिए। मान लीजिए मैं आपके एक्सीडेंट के बारे
2: में। एक्सीडेंट एक साल पहले हुआ था।
3: तो
2: मतलब ये दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, उसे टाला नहीं जा सकता था क्या? मेरे हाथ बचाए नहीं जा सकते थे क्या? ये सारे सवाल इस समय बेकार हैं, बेवक्त हैं। मेरे दोनों हाथ काट दिए गए हैं, ये सत्य है, और मैं अपराश्रित हूं।

0: ओह, I'm sorry विश्राम, हिम्मत से काम लो।
1: तुम मुझसे कह रहे हो हिम्मत से काम लो?
0: विश्राम, अभी तो तुम्हें केवल अपने हाथ गंवाने पड़े।
1: तुम कहना क्या चाहते हो?
0: मान लो इसके बाद कुछ और गंवाने की नौबत आ जाए तो?
1: मतलब?
0: तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी?
1: इस समय जो है उससे बुरी तो नहीं होगी।
0: इतनी निराशा? नहीं विश्राम, धीरज से काम लो।
1: मत दोहराओ ये सब, धीरज हिम्मत ये सब निरर्थक शब्द हैं। मैं अपने दोनों हाथ खो बैठा हूं और मुझे उपदेश देने आया है एक ऐसा आदमी जिसके दोनों हाथ सही सलामत हैं।
0: सॉरी विश्राम, मेरे आने से तुम्हें तकलीफ हुई।
1: वापस जाने की भूमिका बांध रहे हो?
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
1: मुझे इस पहली भेंट में अपना रोना नहीं रोना चाहिए था रंजन, लेकिन काश तुम महसूस कर सकते कि इस तरह परावलंबी, पराश्रित और मजबूर होकर जीना कितना पीड़ादायक है। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों का मोहताज रहना आदमी को कितना तोड़ देता है। रंजन, काश तुम ये समझ सकते।
0: मैं समझता हूँ विश्राम। अच्छा, अब चलूंगा।
1: फिर कब आओगे?
0: शायद कभी नहीं।
1: रंजन, जाने अनजाने मुझसे तुम्हारा अपमान तो नहीं हो गया?
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारी पहली और आखिरी भेंट है। यहाँ आने से पहले ही मैंने ये तय कर लिया था।
1: क्यों?
0: क्योंकि मैं पूना छोड़ रहा हूँ, औरंगाबाद जा रहा हूँ, अब वहीं सेटल होऊंगा।
1: एक पर्सनल सवाल करूँ?
0: करो।
1: तुम्हारी शादी हो गई?
0: नहीं, अभी तो नहीं।
1: शादी का इरादा कर रहे हो?
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है मानो सब तय हो चुका है।
0: नहीं दोस्त, तय वह कुछ नहीं हुआ है। मेरे बड़े भाई औरंगाबाद में अपना बिजनेस करते हैं, मैं उनका पार्टनर बनने जा रहा हूँ। तकदीर ने साथ दिया तो 2-4 साल में लखपति बन जाऊंगा।
1: तुम्हारा भविष्य सुनहरे सपनों से भरा हुआ है रंजन। कभी मैं भी ऐसे सुनहरे सपनों की दुनिया में खोए रहता था। सुनीता से पूछना, शादी के बाद हमने मिलकर कितने सुनहरे सपने संजोए थे।
0: इजी मैन, इजी।
1: मैं अपनी फैक्ट्री शुरू करने वाला था, मेरा भी लखपति बनने का सपना था, एक कार लेने वाला था। सच पूछो तो मुझे कार से ज्यादा मोटरसाइकिल भाती है। ऐसा लगता है रंजन, जैसे किसी तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठे हो। एक बार मोटरसाइकिल के इंजन की रिदम शुरू हो जाए तो बस उसका नशा हो जाता है, और फिर स्पीड 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100, कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन सुनीता को कार पसंद है, इसीलिए हमने कार लेने का निश्चय किया था। मैंने सुनीता को वचन दिया था कार अवश्य लूंगा।
0: मिस्टर विश्राम, यू कैन स्टिल डू इट, तुम अभी भी ये सब कर सकते हो।
1: रंजन।
0: अच्छा, अब जाता हूं, आप इस सब को भूल जाना। रंजन देशपांडे नाम का कोई आदमी जीवन में आपसे मिला था, इस बात को बिल्कुल भूल जाना।
1: नहीं रंजन, कभी कभी आते रहना, अपने बिजनेस के किसी काम से तुम पूना तो आओगे ही।
0: मैं वही कहने वाला था विश्राम के।
2: आप और हमारे घर में?
0: क्यों, आश्चर्य हो रहा है?
2: होगा नहीं, इतने दिनों से आपको अपने घर बुला रही थी लेकिन आप आए नहीं, और आज जब मैं घर में नहीं थी तो
0: यही अच्छा हुआ।
2: चाय तो मिली नहीं होगी आपको?
0: मुझे यहाँ आए बहुत देर हो गई, मैं तो बस अब उठने ही वाला था।
1: फिर कभी ना आने के लिए।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: सच कह रहा हूँ।
2: अच्छा रहने दो रंजन, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप बैठिए, मैं एक मिनट में चाय लाती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये मेरी सहेली और पड़ोसिन है उर्मिला, और उर्मिला ये है श्री रंजन देशपांडे, हमारे ऑफिस में है।
3: नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: आप बातें करें, मैं अभी आई।
1: ठहरो सुनीता, मैं भी चलता हूँ।
2: आओ।
3: मैं आपको जानती हूँ मिस्टर देशपांडे।
0: कैसे?
3: आपकी सहेली मेरी भी सहेली है, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ।
0: अच्छा या बुरा?
3: दोनों।
0: देखिए, ये मेरी और आपकी पहली भेंट है, मैं जो कुछ कहूँ उसे आप गलत ना समझिएगा। ये बात ध्यान रखें कि मेरे पीछे मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता।
3: इसी में फायदा है।
0: कैसे?
3: अगर हम किसी के कहने की परवाह ना करें तभी तो हम जो जी चाहे जैसा जी चाहे मनमाना व्यवहार कर सकते हैं।
0: क्या मनमाना व्यवहार किया है मैंने?
3: अपने मन से पूछिए, अपने सद्विवेक से पूछिए और बताइए किस बात को महत्व देते हैं आप।
0: आप गुस्से से कह रही हैं।
3: किसी पर गुस्सा होने का मुझे क्या अधिकार?
0: फिर भी
3: देखिए, जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं आप।

0: इस बात का जवाब?
1: मैंने पूछा था, किस बात को महत्व देते हैं आप?
0: सच कहूं?
1: हो सके तो।
0: जो मेरे मन को भाता है मैं उसी को महत्व देता हूं।
1: आप ईमानदार हैं, आपको कुछ कहने सुनने का अधिकार मुझे नहीं है।
0: आप कहती जाइए, आपकी बातें मुझे अच्छी लग रही।
1: धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों को चाहिए कि वे पुरुष जैसे रहें और पुरुष जैसा ही व्यवहार करें।
0: मैं समझा नहीं।
1: आप इतने भोले तो नहीं हैं।
0: फिर भी
1: सुनीता मेरी भी सहेली है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ।
0: यानी आपको
1: थोड़ी सी जानकारी है और थोड़ा अनुमान।
0: ओह,

0: मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों को चाहिए कि वे पुरुष जैसे रहें और पुरुष जैसा ही व्यवहार करें।
1: मैं समझा नहीं।
0: आप इतने भोले तो नहीं हैं।
1: फिर भी
0: सुनीता मेरी भी सहेली है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ।
1: यानी आपको
0: थोड़ी सी जानकारी है और थोड़ा अनुमान। एक बात और, आपके निर्णय के बारे में सुनीता को भी आशंका है।
1: क्यों?
0: आपने अभी तक कोई निश्चित हाँ नहीं की है, ऐसा सुनीता कह रही थी।
1: एक बात पूछूं?
0: सुन रही हूँ।
1: माना कि ये मोह एक भंवर जाल है, लेकिन मैं अपने आप को क्यों संभालूं?
0: इतनी आसान बात भी नहीं जानते आप।
1: संस्कार, नैतिकता, मानवता आदि पर लेक्चर देने का इरादा तो नहीं है आपका?
0: कोई फायदा नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं। एक कल्पना कीजिए, यूं समझकर विचार कीजिए कि विश्राम की जगह अगर आप हों तो
1: उससे क्या फर्क पड़ेगा?
0: आपकी विश्राम की जगह आते ही विश्राम आपकी जगह आ पहुंचेगा।
1: और मिला,
0: इसीलिए कह रही हूँ, पुरुष हैं तो पुरुष जैसे रहें और पुरुष जैसा व्यवहार करें।
1: थैंक्स
2: मिस्टर रंजन, अच्छा हुआ आप आए, कभी कभी इसी तरह आते रहिए।
1: लगता है मुझे अब भागना चाहिए।
0: नहीं नहीं, आप चाय पीजिए और सुनीता से बातचीत कीजिए। मैं विश्राम को रोज की तरह बागीचे के उस छोर तक घुमाने ले जा रही हूँ।
3: हाँ, दिन भर घर में बैठे बैठे ये ऊब गए होंगे, खुली हवा में ताजगी मिलेगी।
2: तुम बैठो रंजन, हम अभी आते हैं, चलो और मिला।
0: चलो विश्राम।
3: मन मौजी है उर्मिला।
1: हाँ, और ईमानदार भी।
3: अरे वाह, पहली मुलाकात में ही इतनी तारीफ।
1: पहली मुलाकात में उसे पहचान लिया, तुम्हें पहचानने में कुछ समय।
3: अब तो पूरी तरह पहचान लिया मुझे। या
1: सुनीता, घर अच्छा सजाया है तुमने।
3: लेकिन सच कहूँ रंजन, मुझे ये सजावट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
1: भूमिका बांधे बिना तुम कोई बात कह सकती हो?
3: कोशिश करती हूँ रंजन। 3 साल पहले जब मैं जबलपुर गई थी अपनी दीदी के साथ, उस समय भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। जीजा जी ने नया मकान लिया था, मकान बदलते समय ट्रक भर सामान था और आदमी थे हम 3, मैं, दीदी और जीजा जी। मैंने और दीदी ने, विशेष रूप से मैंने घर इतना बढ़िया सजाया था कि दीदी की तो बात ही मत पूछो, जीजा जी जो कहते थे वो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती। क्या वे ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। ये ठीक नहीं है ना? ना। कहने का मतलब ये है कि उस समय दीदी का घर सजाते हुए जैसा लग रहा था, बढ़िया, अच्छा, बस वैसा ही अब भी लग रहा है।
1: नहीं सुनीता, ये घर सजाते हुए तुम्हें और भी कुछ महसूस होना चाहिए था।
3: मानती हूँ, लेकिन बहुत सोच कर भी ये नहीं समझ सकती कि इसमें कमी कहाँ रह गई है। किसी ने कहा भी तो नहीं।
1: कई बातें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जाती, उन्हें समझ लेना होता है भावनाओं से, मन से।
3: जाने दो रंजन, मैं अब इस घर की हर चीज से ऊब गई हूँ।
1: सुनीता।
3: रंजन, मैं इस घर में जो यातना पा रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ।
1: लेकिन इसमें उसका क्या दोष है?
3: उसी का दोष है रंजन, वो इंजीनियर था, 50 मजदूर और फिटर्स होने पर भी वो खुद उस क्रेन के नीचे काम करने क्यों गया?
1: जब तुम्हें उसके काम की पूरी जानकारी नहीं है तो तुम।
3: नहीं, वो है ही ऐसा, हमेशा अपनी मनमानी करता है, उसके कारण ही मुझे ये यातना मिल रही है। बताओ रंजन, मेरा क्या दोष था जो मुझे ये सजा मिली?
1: सुनीता, जीवन में सभी सवालों का जवाब नहीं मिलता है। कई बार ये सोचकर चुप रहना पड़ता है कि शायद भाग्य को यही मंजूर था।
3: नहीं, भाग्य में यही लिखा था, ये मानकर नियति के सहारे रहना मुझे स्वीकार नहीं। जीवन में सुख प्राप्त करने का अधिकार सबको है, मैं भी अपना सुख प्राप्त करके रहूंगी।
1: तुमने निश्चय कर लिया है तुम क्या करना चाहती हो?
3: पिछले 1 महीने से हम इसी बारे में बातें कर रहे हैं, हमने तय कर लिया है कि
1: अगले रविवार को तुम ये कहकर कि तुम अपनी दीदी के यहाँ जा रही हो और मैं ये कहकर कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ पूना छोड़ देंगे और दोनों औरंगाबाद जाकर साथ रहेंगे। तुम्हें बाकायदा तलाक मिलने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे
3: और खूब घूमेंगे।
1: ठीक, लेकिन।
3: लेकिन क्या?
1: इस तरह भाग निकलना।
3: तो तुम उसकी अनुमति लेने आए थे?
1: नहीं, लेकिन उसे इस बात का संकेत देना मुझे जरूरी लगा।
3: ओह माय गॉड, तुमने कुछ कहा तो नहीं?
1: वो इतना सीधा और सरल है, अबोध बच्चे की तरह।

0: मरोड़ कर कहने पर भी वो नहीं समझेगा। सुनीता, एक बार फिर सोच लो।
1: सोच लूं और इसी घर में घुटती रहूं, सुलगती रहूं, ऑफिस घर गृहस्थी के साथ इसकी सेवा करती रहूं जैसे पिछले एक साल से कर रही हूं, अपने अरमानों और सपनों का गला घोट दूं? रंजन, मुझे तो अब डर लग रहा है।
0: किस बात का?
1: ऐन मौके पर तुम पीछे ना हट जाओ।
0: नहीं, ये बात नहीं, फिर भी कोई कदम उठाने से पहले हमें एक बार और सोचना चाहिए।
1: मैंने सोच लिया है, मेरा घर समृद्ध हो, मेरा पति स्वस्थ सबल सशक्त हो, भयंकर आंधी तूफान में अपने से लिपटी कोमल लता को आश्रय देने वाले दृढ़ वृक्ष की तरह, जिसकी मजबूत बाहों के घेरे में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं, यही मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करूंगी। यही होगा ना, लोग उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, सगे संबंधी मुंह फेर लेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: फिर भी एक बार और सोच लो सुनीता।
1: अब सोचने को रह क्या गया है रंजन?
0: सुनीता, अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हारी सहेली से एक बात सुननी पड़ी थी। पुरुषों को चाहिए पुरुष जैसे रहें और पुरुष जैसा व्यवहार करें। तब से मुझे लग रहा है कि स्वीकृति और इनकार के बीच भी एक अवस्था होती है। मैं इस समय उसी में से गुजर रहा हूँ।
1: तुम क्या कह रहे हो रंजन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
2: फिर भी विश्राम, उस धूर सियार ने आखिर अपना शिकार उड़ा ले जाने का प्रयत्न किया।
0: कैसा शिकार?
2: कुछ नहीं, मैंने अभी विश्राम को एक कहानी सुनाई।
1: कौन सी कहानी?
2: एक सिंह की, जंगल के राजा की।
0: इंटरेस्टिंग, हम भी तो सुने।
2: आपको पसंद नहीं आएगी।
0: छोटे बच्चों के लिए है क्या?
2: हाँ, अगर बचपन में ना सुनी हो तो बड़ों के लिए भी है।
3: लेकिन उर्मिला, तुमने मुझे उस कहानी का अंत तो सुनाया ही नहीं।
2: हर कहानी का अंत तो होता ही है विश्राम, वो अलग बात है कि आदमी उसे जाने या ना जाने।
0: फिर भी आदमी हर एक कहानी का अंत अपनी इच्छा अनुसार निकालने का प्रयास तो करता ही है।
2: हाँ, ऐसा अंत जो उसे सुविधापूर्ण लगे।
0: खैर छोड़िए, आप कहानी सुना रही है ना?
3: हाँ उर्मिला, तो तुम्हारी कहानी के सिंह की आंखें चली जाती हैं और वो अंधा हो जाता है, लेकिन ये कैसे संभव है कि उसका शिकार सियार ले भागे? कुछ भी हो, सिंह वनराज है, सियार उसकी गुफा में जाएगा कैसे?
2: धूर्त सियार ऐसे ही होते हैं, हमेशा ताक में रहने वाले, और अवसर मिलते ही वनराज की गुफा में घुस जाते हैं।
3: मैं नहीं मानता।
2: आप क्या सोचते हैं मिस्टर रंजन?
0: हो सकता है, ऐसे सियार जरूर होंगे।
2: होंगे नहीं, होते हैं, हैं भी।
0: आपकी कहानी में कुछ परिवर्तन कर दे तो?
2: उसे वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
0: सियार के बदले वहाँ दूसरा सिंह आ जाए तो?
2: तो आपको वो श्वान योक्ति मालूम है ना, जिसका अर्थ है श्वान या सियार सिंह बनने का कितना भी ढोंग क्यों ना रचे, सिंह तो सिंह ही होता है।
0: तो आपके विचार से इस कहानी का अंत क्या होना चाहिए?
3: छोड़ो भी।
1: और नहीं तो क्या, मेरी राय में ये बकवास बंद की जाए और चाय पी जाए। मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ अभी। सुनिए, आप मेरे साथ जरा अंदर चलिए।
3: चलो।
2: हाँ, वैसे बेकार ही है ये चर्चा, क्योंकि दूसरों के झूठे भोजन पर निगाह रखने वाले से
0: किसी पुरुषार्थ या पराक्रम की अपेक्षा रखना गलत है, शायद आप यही कहने वाली हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी ना करें।
2: उससे अंतर पड़ेगा, सियार सिंह हो जाएगा।
0: उसे सियार समझकर शायद आप गलती कर रही हूं।
2: अगर ऐसा हो तो?
0: ऐसा ही है, आपकी इस कहानी में दूसरा भी सिंह ही है। लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि आपको अपनी कहानी के अंधे सिंह से इतनी हमदर्दी क्यों?
2: नियति जिनके साथ कठोरता बरत कर पराश्रित और परावलंबी बना देती है, उनके लिए हर एक को हमदर्दी होगी, स्त्रियों को और अधिक।
0: किसी किताब का रटा रटाया वाक्य लग रहा है।
2: नारी मन को तुम क्या समझोगे रंजन, प्रेम करना स्त्री का सहज गुण है, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी ममता निस्वार्थ होती है। बिना किसी आशा के किसी के प्रति ममता रखना केवल स्त्री के लिए ही संभव है। हर स्त्री के मन में मूल रूप से एक माँ वास करती है, जो भी यातना पा रहा है उसे देख स्त्री के मन में सहानुभूति उमड़ आती है।
0: ये प्रेम किसी और से भी तो हो सकता है।
2: रंगे सियार और गीदड़ों से?
0: उस भीड़ में कोई सिंह भी हो तो?
2: सिंह?

0: असंभव।
1: और अगर ये संभव हुआ तो? पुरुषों ने पुरुषों की तरह जीना स्वीकार किया तो?
0: तो क्या?
1: जो मैं कहूं आप स्वीकार करेंगी?
0: क्या कहना चाहते हैं आप?
1: उर्मिला, तुम्हारी सहेली के साथ मैं शादी करने वाला था यहां से भागकर।
0: जानती हूं,
1: लेकिन अब मैंने ये निर्णय बदल दिया है।
0: अचानक?
1: अचानक नहीं, निर्णय पहले ही डामाडोल था, अब पक्का हो गया है।
0: क्यों?
1: मुझे गुरु मिल गया।
0: सहेली को बता दिया?
1: अभी नहीं।
0: तो कब कहोगे?
1: गुरु की अनुमति मिलने पर।
0: अच्छी बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए।
1: अभी बताता हूँ गुरु महाराज।
0: गुरु महाराज मैं?
1: हाँ उर्मिला, एक दृष्टि से तुम मेरी गुरु हो। उर्मिला, सुनीता के विचारों में मैं कुछ कमी महसूस कर रहा था, लेकिन वो कमी क्या थी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें देखकर, तुम्हारे विचार जानकर मैं समझ गया और मुझे ये निर्णय लेने में मदद मिली।
0: मैं समझी नहीं।
1: अभी समझाता हूँ। विश्राम, सुनीता,
2: आया, जरा बाहर आना।
3: अभी आई।
1: सुनो विश्राम और सुनीता, तुम दोनों को साक्षी बनाकर मैं उर्मिला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। इसका हाथ मांगता हूँ।

0: एक था। अभी आप श्री विजय राजे के मूल मराठी नाटक एक होता का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्रीमती सुषमा जतकर ने किया। निर्देशक थे श्री सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक श्री महफूज हसन और तकनीकी सहायक श्री दयानंद शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, सुनीति कोहली, मधुबेदी और श्याम अरोड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ। गायिका हैं प्रभा बिष्ट।

करके गर्भ डाला, बरी उत्पन्न होई, फली न करनी काहे को, बुरा न मान कोई।

0: yale duka galega bole abama.
1: उत्तराखंड के लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी

0: जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़न AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित

0: रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को

0: स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और इस समय श्रोता सुनते हैं खेती की बातें। आज आपको सुनवा रहे हैं जानकारी मशरूम की वैज्ञानिक काश्त। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के मिश्रा।
3: खाद्य मशरूम के विश्व में लगभग 2000 प्रजातियां अभिलेखित की गई हैं। इनमें से 200 प्रजातियां प्रायोगिक, 60 व्यावसायिक एवं 10 प्रजातियां औद्योगिक स्तर पर उगाई जा रही हैं। देश में मशरूम का व्यावसायिक उत्पादन आखिरी 2 दशकों में वैज्ञानिकों एवं कृषकों के मिले जुले प्रयास से 1,20,000 टन पहुँच गया है, जिसका 50% से अधिक भाग सीमांत व लघु मशरूम उत्पादन इकाइयों द्वारा तथा शेष औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राप्त होता है। देश के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशों में बढ़ती हुई सीमांत व लघु उत्पादन इकाइयां कृषकों की आय वृद्धि का विशेष स्रोत बन चुकी हैं। हमारे देश में मशरूम उत्पादन में आधे से अधिक उत्पादन अग्रणी प्रदेशों जैसे पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश से द्वारा होता है। उत्तराखंड का कुल मशरूम उत्पादन 8,000 टन है। मशरूम अनुसंधान व विकास की कई योजनाएं देश में चलाए जाने के कारण अब लगभग सभी प्रदेशों में मशरूम का उत्पादन होने लगा है। भारतवर्ष में प्रमुख रूप से चार तरह के मशरूम की खेती की जाती है। ये हैं श्वेत बटन मशरूम, आस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम एवं धान के पुआल का मशरूम। इन मशरूमों के उत्पादन की विधि, वातावरण एवं माध्यम की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। इसी प्रकार इनकी उत्पादन क्षमता, बाजार मूल्य व मांग भी भिन्न भिन्न है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित श्वेत बटन मशरूम है और दूसरा स्थान आस्टर मशरूम का है। उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन मुख्यतया देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर जनपदों तक सीमित है। प्रदेश के कुल उत्पादन में 2100 मैट्रिक टन हिस्सा फ्लैक्स फूड लिमिटेड देहरादून का है तथा शेष लघु एवं सीमांत स्तर की मशरूम उत्पादन इकाइयों द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से बटन मशरूम, जिसका कि वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है, इसकी खेती की जा रही है। दूसरी मुख्य प्रजाति ढेंगरी या ऑस्टर मशरूम है, जिसका कि वैज्ञानिक नाम प्लूटस प्रजाति है, व अन्य मशरूम का उत्पादन नगण्य है। मशरूम की खेती पौष्टिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें न केवल क्षुधा पूर्ति होती है वरन भरपूर पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जमीन एवं प्रति फसल कम समय की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन की तीन प्रणालियां हैं। इनमें से जो प्रथम प्रणाली है उसे हम सीमांत स्तर प्रणाली कहते हैं। सीमांत स्तर के मशरूम उत्पादन हेतु फसल कक्ष के रूप में झोपड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इनकी माप 20 फीट लंबी, 17 फीट चौड़ी एवं 12 फीट ऊंची अथवा 35 फीट लंबी, 18 फीट चौड़ी एवं 12 फीट ऊंची होती है तथा इन्हें बनाने में पुआल, सरकंडा, घास एवं बांस का प्रयोग करते हैं। भीतरी रैक का निर्माण बांस अथवा लकड़ी एवं सरकंडा द्वारा किया जाता है। मशरूम उत्पादक कंपोस्ट या तो स्वयं बनाते हैं अथवा वे पास्तुरीकृत कंपोस्ट की खरीद आपूर्ति केंद्र से करते हैं। इस प्रणाली में मशरूम की कुल पैदावार 12 से 16 किलोग्राम प्रति 100 किग्रा कंपोस्ट होती है। दूसरी जो उत्पादन प्रणाली है वो लघु स्तर उत्पादन प्रणाली है। यह प्रणाली ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार जिले में प्रचलित है। इसमें फसल कक्ष की माप 40 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा एवं 12 फीट चौड़ा अथवा 50 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा व 12 फीट ऊंचा रखते हैं। इसके लिए पक्के कक्ष का प्रयोग किया जाता है। रैक का निर्माण एंगल आयरन अथवा बांस से होता है, जिन पर 3 से 4 टायर में 10 से 12 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति बैग को रखते हैं। इस प्रणाली वाले कृषक कंपोस्ट या तो स्वयं दीर्घ विष से बनाते हैं अथवा कंपोस्ट आपूर्ति केंद्र से पास्तुरीकृत कंपोस्ट खरीदते हैं। इस प्रणाली में मशरूम की कुल पैदावार 12 से 18 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम कंपोस्ट होती है। तीसरी जो हमारी प्रणाली है उसे हम औद्योगिक स्तर उत्पादन प्रणाली कहते हैं और यह प्रणाली हमारा उत्तराखंड में फ्लैक्स फूड लिमिटेड देहरादून में स्थित है। इसमें इंसुलेटेड एवं वातानुकूलित फसल कक्ष के निर्माण किए जाते हैं। इसकी माप 83 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा व 12 फीट ऊंची होती है। रैक एंगल आयरन द्वारा निर्मित 4 टायर में 10 से 12 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति बैग रखने हेतु बनाए जाते हैं। इसमें केवल पास्तुरीकृत कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है तथा इसकी पैदावार 16 से 18 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम कंपोस्ट होती है। किसान भाइयों, सीमांत स्तर पर मशरूम की खेती हेतु जो हमारी प्रमुख आवश्यकताएं हैं उनमें से तकनीकी प्रशिक्षण, साधारण फसल कक्ष अथवा झोपड़ी, माध्यम जिसे कि हम कंपोस्ट भी कहते हैं, स्पान अथवा बीज, वातावरण मुख्य रूप से तापक्रम एवं आर्द्रता, पूंजी व बाजार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बटन मशरूम जो कि एगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से प्रचलित है प्रमुख है एवं उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रमुख स्थान है। यह मशरूम विश्व में लगभग 31% भाग में उगाई जाती है। दूसरी मुख्य प्रजाति ढेंगरी या ऑस्टर मशरूम है, जिसका कि वैज्ञानिक नाम प्लूटस प्रजाति है। व्यावसायिक तौर पर खेती की जाने वाले मशरूम में बटन मशरूम सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस मशरूम को 14 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उगाया जा सकता है। कुल मशरूम उत्पादन का लगभग 80 से 85% भाग इसी की खेती से मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में साल में अधिकांश महीनों में इसकी खेती की जा सकती है। बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस है अगेरिकस की कई प्रजातियां

उपलब्ध हैं, परंतु हमारे देश में अगेरिकस बाइस्पोरस की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। यह मशरूम छाते की तरह का होता है और इसमें टोपी तथा डंठल होता है। आरंभिक अवस्था में टोपी एक छोटी कली के आकार की होती है, जो बाद में मटर के आकार में हो जाती है और फिर इसका आकार बटन जैसा हो जाता है। इसलिए इस मशरूम को मुख्य तौर से बटन मशरूम भी कहा जाता है। इसकी टोपी सफ़ेद रंग की होती है, जो बंद होती है तथा डंठल से जुड़ी हुई होती है। टोपी के नीचे गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स एक झिल्ली द्वारा ढकी हुई होती है और इस झिल्ली को हम वेल कहते हैं। मशरूम की वृद्धि के बाद यह झिल्ली जो है वो फट जाती है और गिल्स हमको आसानी से साफ दिखाई देते हैं और तथा उसमें बीजाणु जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। टोपी खुल जाती है, इसका आकार बढ़ता है और मशरूम जो हमारा छाता का रूप ले लेती है। मशरूम की खेती के मुख्य रूप से चार प्रमुख चरण हैं। पहला जो चरण है उसमें वो है उपक सामग्री, जैसे कि हम कंपोस्ट कहते हैं, उसका निर्माण करना। और इसके निर्माण में अगर हम लघु अवधि द्वारा करते हैं तो 16 से 18 दिन का समय लगता है, और यदि हम इसके निर्माण के लिए दीर्घ अवधि अपनाते हैं तो इसमें हमको करीब करीब एक महीने का समय लग जाता है। दूसरा जो चरण है उसे हम कहते हैं उपज सामग्री में बीज को मिलाना या स्पान को डालना। तीसरी जो प्रणाली है उसमें हम स्पानिंग की हुई उपज सामग्री को ढकते हैं तथा उसके ऊपर 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटी केसिंग की तह बिछाते हैं। और चौथा जो चरण है उसमें फलन काय का निर्माण होता है और हम फलन काय का रखरखाव करते हैं। आवरण मृदा बिछाने के 12 से 18 दिन के पश्चात मशरूम का निकलना शुरू हो जाता है तथा यह मशरूम 50 से 60 दिन तक निरंतर निकलते रहते हैं। दिन में एक अथवा दो बार मशरूम को टोपी खुलने से पहले या हम जिसकी परत 1 से 1.5 इंच की हो अंगुलियों के सहारे ऐंठ करके हम निकाल लेते हैं। मशरूम खुल जाने पर तथा छतरी बन जाने पे मशरूम की गुणवत्ता एवं बाजार मूल्य कम हो जाता है। किसान भाइयों, 1 किलोग्राम मशरूम पैदा करने में जो हमारा व्यय आता है वो लगभग 50 से 60 रुपये तक का खर्च होता है, जबकि बाजार में ताज़ा मशरूम 150 से 200 रुपये किलो तक बिकता है। इस प्रकार प्रति किलो हम 100 रुपये से 150 रुपये हम कमा सकते हैं। दूसरी जो हमारे मुख्य प्रजाति है जिसे हम ढींगरी मशरूम या ऑस्टर मशरूम कहते हैं, इस मशरूम को हम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे उगा सकते हैं। ढींगरी की कई प्रजातियां विश्व में हैं, करीब करीब इसकी 40 प्रजातियां विश्व में हैं और जिनमें से जो मुख्य प्रजातियां हैं वो हैं प्लोटस सजोर काजू, प्लोटस आस्ट्रिएटस, प्लोटस फ्लैबलेटस, प्लोटस सैपिडस, प्लोटस फ्लोरिडा, प्लोटस इरिंगाई। ये जो प्रजातियां हैं इनका व्यावसायिक स्तर पर खेती हो रहा है। इस मशरूम के उत्पादन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे उन सभी कृषि अवशेषों पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है जिनमें लिग्निन व सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ढींगरी मशरूम की कुछ प्रजातियां शरद ऋतु में तथा कुछ को ग्रीष्म ऋतु में उगा सकते हैं, अतः इनका चुनाव अपने अपने क्षेत्रों की जलवायु को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। ढींगरी मशरूम को मुख्य रूप से धान के पुआल, गेहूं के भूसे, मक्के का तना, सोयाबीन का भूसा एवं दलहनी फसलों पर उगाया जा सकता है, किंतु गेहूं का भूसा व धान का पुआल इस खेती के लिए उपयुक्त हैं। लाभ की दृष्टि से ढींगरी मशरूम सफ़ेद बटन मशरूम की तुलना में अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इसमें समय और धन कम लगता है। इसकी जो फसल चक्र है वो भी काफ़ी कम है, इसे हम 1.5 से 2 महीने के समय में पूरी फसल ले सकते हैं। 1 किलोग्राम ढींगरी मशरूम पैदा करने में लगभग 20 से 25 रुपए तक का खर्च आता है तथा बाजार में ताज़ा मशरूम 70 से 75 रुपए किलो तक बिक जाता है। इस प्रकार ढींगरी मशरूम के उत्पादन से 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक की शुद्ध लाभ किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। तकनीकी दृष्टि से उत्तराखंड में मिश्रित परिस्थितियाँ मौजूद हैं और प्रचुर मात्रा में कच्चा माल भी उपलब्ध है, परंतु फिर भी मशरूम की खेती को आशानुकूल सफलता नहीं मिल पा रही है। इसकी खेती तथा विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव, अपर्याप्त गुणवत्ता स्पान एवं कंपोस्ट आपूर्ति, प्रसंस्करण इकाइयों की कमी व विपणन असुविधा। यदि इन सभी बाधाओं का निवारण किया जा सके तो मशरूम की खेती में आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाए जिससे ज़्यादा लोग मशरूम की खेती का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। गुणवत्ता स्पान एवं कंपोस्ट आपूर्ति केंद्रों की व्यवस्था होने से प्रशिक्षण प्राप्त लोग सुविधाजनक रूप से मशरूम की खेती कर सकेंगे। चूंकि अन्य फसलों व फलों की भांति मशरूम को भी अधिक समय तक
ताजे रूप

0: रूप में रखना संभव नहीं है, अतः इसके विपणन व प्रसंस्करण हेतु समुचित व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। मशरूम की खेती को पर्याप्त बढ़ावा न मिलने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मशरूम के पोषकीय एवं औषधीय गुणों के बारे में आम लोगों को अनभिज्ञता है, अतः जरूरी है कि इसके पोषकीय एवं औषधीय गुणों को इसके लोगों को बताया जाए। इसी कारणवश यह उत्पाद देश के जनमानस में के भोजन के रूप में अपना स्थान नहीं बना पाया है, इसलिए यह आवश्यक है कि मशरूम तथा इसके उत्पादों के प्रचार प्रसार की समुचित व्यवस्था की जाए।
1: मशरूम की वैज्ञानिक काश्त, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर के मिश्रा से जानकारी अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा अस्मिता मोकाशी का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा महिपाल सिंह मेहता से कुमाऊनी लोकगीत। संध्या 5:15 पर युवा साथियों का कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा गोवा दिवस। खेल जगत और आज का इतिहास भी बच्चे सुनेंगे, युवा साथी सुन सकेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम होगा, जिसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस और प्रधानमंत्री कुसुम योजना। मिशन लाइफ के तहत सुनिएगा जल की बचत आज की जरूरत। भक्ति संगीत संध्या 6:41 पर सुनवाया जाएगा, आज आनंद लीजिएगा अनूप जलोटा और नितिन मुकेश के गाए भक्ति वंदन का। संध्या 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज की बातें होंगी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर। इसी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषक शेर सिंह से प्रमोद कुमार पांडे की बातचीत सुनवाई जाएगी। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से शाम सुन पाएंगे संध्या 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में। रात 8 बजे सुगम संगीत सबरस में श्रोता सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, दिन के 2:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं जाने माने अभिनेता जगदीप। श्रोताओं कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना, फिर चाहे वो स्क्रीन पर हो या फिर असल जिंदगी में। लेकिन जगदीप साहब, जिनका वास्तविक नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम जगदीप रखा। वो ऐसे मंचे हुए कलाकार थे कि दोनों ही मोर्चों पर, यानी रियल और रियल लाइफ दोनों में ही उन्होंने अपनी सशक्त अभिनय की अमिट छाप छोड़ी।

तो श्रोताओं, मशहूर अभिनेता जगदीप का जन्म 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया नामक स्थान में हुआ था। साल 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उसी साल उनके पिता का देहावसान हुआ और उनका परिवार बेहद मुश्किल दौर से गुजरा। उनकी माँ जगदीप और बाकी बच्चों को अपने साथ लेकर मुंबई आ गईं और परिवार के भरण पोषण के लिए एक अनाथ आश्रम में भोजन बनाने का कार्य करने लगी। जगदीप अपनी माँ की बेबसी देखकर बहुत दुखी हुआ करते थे और माँ की मदद के लिए उन्होंने स्कूल छोड़कर सड़क पर साबुन, कंघी और पतंगे बेचना शुरू कर दिया। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था, लेकिन मैं गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता था, इसीलिए सड़क पर सामान बेचने लगा।

0: तूती बोलती थी। बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन ने उन्हें पहचान दिलाई। साल 1957 में निर्देशक पीसी संतोषी की फिल्म हम पंछी एक डाल की प्रदर्शित हुई, जिसमें जगदीप साहब के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। उसके बाद तो कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। अब दिल्ली दूर नहीं, आर पार, ब्रह्मचारी और एक हास्य अभिनेता के तौर पर 1968 में तीन बहुरानियाँ, 1969 में जीने की राह, 1970 में दर्पण, 1972 में गोरा और काला, 1972 में ही आँख मिचौली, 1974 में इंसानियत, 75 में जग्गू, 1977 में चला मुरारी हीरो बनने जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी यादगार भूमिकाएं निभाई और वो दर्शकों के दिलों में छा गए।
1: अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के।

श्रोताओं, जगदीप साहब ने खुद को उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया जब जॉनी वॉकर और महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों की

0: तो श्रोताओं, जगदीप साहब ने अपने 6 दशक के फिल्मी करियर में लगभग 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें पहचान मिली फिल्म ब्रह्मचारी से, और रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले में निभाए गए उनके किरदार सूरमा भोपाली ने उनकी शोहरत को घर घर तक पहुंचा दिया। सूरमा भोपाली नाम से बाद में उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया और आखिरी बार साल 2012 में फिल्म गली गली चोर है, इस फिल्म में वो नज़र आए। एक हास्य कलाकार के तौर पर जगदीप साहब की कॉमिक टाइमिंग, बड़ी मुस्कान, अनोखी आवाज़, चेहरे के अनेक भावों और अपनी ही तरह के ख़ास अंदाज ने उन्हें दर्शकों का बेहद चहेता कलाकार बनाया। वो जानते थे कि किस तरह से लोगों को हंसाया जाए। दर्शकों को हंसाने वाला ये हर फन मौला कलाकार 8 जुलाई 2020 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गया।
1: मैं हूँ तू।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के फनकार थे जाने माने मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, पेश है सदाबहार फिल्मी गीत।

सदाबहार फिल्म गीत के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार। सदाबहार गीत नाम ही काफी है, कितने खूबसूरत तराने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बने हैं जिनमें जिंदगी के हर रंग हम देखते हैं। और आज सदाबहार फिल्मी गीतों का गुलदस्ता हाजिर है, खूबसूरत नगमों के साथ आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के गाए बादशाह फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, मौसिकार शंकर जयकिशन।

शुदों संदेशे जब चिट्ठियों संग खतों संग जज्बातों की चाशनी में डूबे रहते थे, प्यार मोहब्बत खुशी गम आमंत्रण आंसू मुस्कान सब कुछ समेटे रहते थे। वो दौर ही कुछ और था जब खत लिखा जाता था, और जब खतों का दौर चलता था तो खूबसूरत फिल्मी दुनिया में नगमे भी तराशे गए तलाशे गए जिन्हें आज भी हम सुनते हैं। तो वो दौर जिन्होंने खत लिखे हैं याद आते हैं उन्हें, और आज भी खत पाकर झूमने की खुशी कुछ यूं ही नज़र आती है जैसे अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक उस दौर का खूबसूरत तराना। फिल्म है अर्धांगिनी, लता मंगेशकर ने इसे मखमली आवाज़ से सवारा है, मजरूह सुल्तानपुरी साहब का गीत है और वसंत देसाई का बेहद मधुर संगीत।

शुद्ध गोरे रंग को श्याम रंग की तलाश हो, अपने जज्बात बयां करने हो, तो गुलजार साहब से बेहतर इजहार भला कौन कर सकता है। और याद आता है हमें बंदिनी फिल्म का ये बेहद सुरीला गाना, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज़ से सवारा गुलजार साहब के बहुत ही भावपूर्ण उनके शब्द हैं और इसे सुरों में ढाला है SD बर्मन ने। आइए सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं, ये थी लता मंगेशकर बंदिनी फिल्म में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस

एक में सुनना चाहें तो अक्सर हम यही गाना ट्यून करते हैं जो अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। ये है बरखा फिल्म से, गायिका एक बार फिर से सुरीली लता मंगेशकर जी। राजेंद्र कृष्ण के बेहद खूबसूरत बोल हैं और उतना ही मधुर संगीत चित्रगुप्त का।

श्रोता समय सदाबहार फिल्म गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से, और अब एक और सुरीला गाना श्रोताओं आपके लिए। फिल्म है बेटी बेटे, आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का मधुर संगीत। जिंदगी जब कर दी तेरे नाम ए सनम, जिंदगी जब कर दी तेरे नाम ए सनम, तेरी आहट भी तेरी पहचान ही लगी।

एक तुम जो साथ हो तो हंसी है नज़ारे, एक तुम जो साथ हो तो हंसी है नज़ारे, तुमसे ही गुलजार है चमन की ये बहारें। एक खूबसूरत गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, आंचल फिल्म से है, आशा भोसले महेंद्र कपूर के युगल स्वर हैं, प्रदीप का गीत और श्री रामचंद्र का संगीत है।

और अब श्रोताओं, चलते चलते एक और सदाबहार खूबसूरत तराना आरजू फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, बोल हसरत जयपुरी के, और तर्ज बनाई है शंकर जय किशन ने।

तो श्रोताओं, सदाबहार फिल्म गीतों का सफर आज अंजू पांगती के साथ यहीं तक। इजाजत दीजिए, नमस्कार। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5:00 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: एफ एम 100.8 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी बागेश्वर के एफ एम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर भी रिले किए जा रहे हैं। संध्या के ठीक 5 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के नी वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री डीके कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति एनएससी ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना एसआईपीओ को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी एनएससी बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महिपाल सिंह मेहता का गाया यह कुमाऊनी लोकगीत।

महिपाल सिंह मेहता के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शैलस्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय है गोवा दिवस। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता मिशन लाइफ, जल की बचत आज की जरूरत के अंतर्गत जल संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करते चकोटी अल्मोड़ा के रहने वाले युवा पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट से श्याम भट्ट की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर और किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे संध्या 7:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:55 पर, 6:05 पर विचार बिंदु और उसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज की बात ये कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर। विविधा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:50 पर। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। कल प्रातः 7:20 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे पुष्कर सिंह मेहर। कल प्रातः 7:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे तंबाकू सेवन और उसके दुष्प्रभाव विषय पर डॉक्टर अमित आर्य असिस्टेंट प्रोफेसर व ENT विशेषज्ञ से बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा से भेंट करता होंगे संजय जोशी। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत निर्झर आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर और सुगम संगीत आप सुनेंगे सबरंग कार्यक्रम में प्रातः 10:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरभार आप सुनेंगे प्रातः 10:35 पर। कल प्रातः 11:00 आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले के जाएगा। समय याद रखिएगा कल प्रातः 11:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर संसार। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:05 पर हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे। सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर और कल दोपहर 1:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पर आधारित रूपक भारतीय आत्मा का स्वर डॉक्टर सुनील केशव। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:00 और किसान भाई अपना कार्यक्रम खेती की बातें सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कल इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा पर्वतीय क्षेत्रों में पछेती धान की वैज्ञानिक खेती। जानकारी देंगे डॉक्टर JP आदित्य। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार आप सुनेंगे दोपहर 2:45 पर और सभा के अंत में अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत।

हमारी सायंकालीन सभा रोजाना की आरंभ होती है संध्या 5 बजे। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैलस्वर। कल इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार होंगे विमला वोरा और साथी। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरी संगीत सभा जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। संध्या 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। उत्तरायण कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:45 पर और भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे संध्या 6:41 पर। प्रादेशिक लोकगीत आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। संध्या 7:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। फिल्म संगीत आप सुनेंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत। मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस होगा रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सायंकालीन और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

युवाणी सुनने वाले हमारे सभी युवा मित्रों को आपके मित्र भास्कर साह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, हाजिर हैं हम आपका प्यारा सा कार्यक्रम लेकर युवाणी, जिसमें आज हम युवाओं से करेंगे बात। और युवाओं से जो बात करें, उससे पहले हम उनसे यही कहना चाहेंगे, उम्र छोटी है तो क्या, उम्र छोटी है तो क्या, हौसले बड़े रखो, ख्वाब ऊँचे हों तो कदम भी खड़े रखो। ये दुनिया झुकेगी तुम्हारी इरादों के आगे, ये दुनिया झुकेगी तुम्हारे इरादों के आगे, बस अपने अंदर के जज्बे को जिंदा रखो।

वाकई में दोस्तों, हम युवाओं के अंदर अगर इस तरह का जोश ना हो तो बात ही क्या। हर मंजिल को हमें पाने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, ये हौसला होना चाहिए कि हम अपनी मंजिल को अवश्य पाएंगे, भले ही कितने ही रास्तों में तकलीफें क्यों ना हो, कितने ही बार हम गिरे ना, कितने बार हमें ठोकरें क्यों ना लगें, लेकिन हमें अपनी मंजिल से नहीं भटकना है। यही जज्बा हमें अपने अंदर कायम रखना है तो हम अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल तक अवश्य पा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की बात की, जिसमें आज का विषय हमारा है गोवा दिवस। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं गोवा दिवस, यानी उस खूबसूरत राज्य का स्थापना दिवस जिसे भारत का पल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। दोस्तों, गोवा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि ये एक संस्कृति, एक जीवन शैली और एक एहसास है। यहाँ की सुनहरी रेत, लहरों की मधुर आवाज और दिल को छू लेने वाली फिजा हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। गोवा पर लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों का शासन रहा, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से इसे आज़ाद कराया और 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। यही दिन हम आज गोवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। दोस्तों, गोवा की संस्कृति भारतीय और पुर्तगाली परंपराओं का अद्भुत संगम है। यहाँ के कार्निवल, संगीत, नृत्य और खान पान सब कुछ बेहद खास है। और अगर खाने की बात करें तो फिश करी, राइस और बेबिंका जैसे व्यंजन तो हर किसी का दिल जीत लेते हैं। दोस्तों, गोवा हमें सिखाता है जिंदगी को जीने का सही तरीका, काम के साथ साथ आनंद लेना और हर पल को खुलकर महसूस करना। तो दोस्तों, इस गोवा दिवस पर क्यों ना हम भी ये संकल्प लें कि जिंदगी को थोड़ा और खुलकर जिएं, हर पल को महसूस करें और अपने देश की इस खूबसूरत धरोहर पर गर्व करें। रेत पर लिखी कहानी सा है ये सफर अपना, रेत पर लिखी कहानी सा है ये सफर अपना, लहरें मिटा भी दें तो क्या हौसला है सपना, हर सुबह एक नई शुरुआत का नाम है, यही तो जिंदगी और यही गोवा का पैगाम है।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए दोस्तों, अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट का, यानी कि आज के इतिहास का। तो चलिए जानते हैं कि 30 मई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्ज है। सबसे पहले बात उसी दिन की जो आज के कार्यक्रम में आज की बात का विषय भी था, यानी कि 30 मई 1987 को इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा भारत का 25वां राज्य बना और इसकी पहचान केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि एक समृद्ध संस्कृति के रूप में भी स्थापित हुई। और दोस्तों, 30 मई यानी आज ही के दिन 1431 को फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क को इस दिन जीवित जला दिया गया था। उनकी वीरता आज भी इतिहास में अमर है। वर्ष 1919 को आज ही के दिन यानी 30 मई को महान शास्त्रीय संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ। उनकी आवाज़ आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती है। वर्ष 1981 को आज ही के दिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं सिखाता बल्कि ये बताता है कि हौसला, संघर्ष और बदलाव यही असली पहचान बनाते हैं इंसान की। तो दोस्तों, ये तो थी 30 मई के कुछ खास ऐतिहासिक पल जो हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन अपने आप में एक नई कहानी लेकर आते हैं।
5: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
6: अच्छा, मैं कहती हूँ

दोस्तों, इस गीत के बाद अब बात करते हैं कल पूछे गए प्रश्न के उत्तर का। दोस्तों, कल हमने आपसे प्रश्न किया था, मशहूर शायर व गीतकार बशीर बद्र साहब का जन्म कब हुआ था? मशहूर शायर व गीतकार बशीर बद्र साहब का जन्म कब हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर था 15 फरवरी 1935 को। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अपने उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और आज का प्रश्न, ये हम आपको बताएंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसके सही जवाब जिन श्रोता मित्रों ने दिए हैं उनके नाम बताने का। और उन श्रोता मित्रों के नाम हैं NLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल, सुनीता, हर्ष कुमार, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़, अमान, माही, नीलोफर, शन्नो और शब्बो। आप सभी ने इस प्रश्न का, कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और नोट करें श्रोता मित्रों, हमारे आज का प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? इस प्रश्न का उत्तर हम अपने कल के अंक में प्रसारित करेंगे और जिन श्रोता मित्रों के सही जवाब होंगे उनके नाम भी हम अपने कल के अंक में प्रसारित करेंगे। अगर आप इस प्रश्न का देना चाहते हैं जवाब तो नोट करें हमारा व्हाट्सएप नंबर 9444110122। इसी के साथ अपने मित्र भास्कर साह को कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 5:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं का नमस्कार। श्रोताओं आप सब लोग ने कार्यक्रम लिबेर में उपस्थित छूँ श्याम भट्ट। कार्यक्रम में सबूत पहले करने बातचीत। श्रोताओं आज एक दिन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाई जा। ये दिवस का उद्देश्य आलू के पोषण, खाद्य सुरक्षा और खेतबाड़ में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है लेजी लोगों के जागरूक करन छे। जैसे कि हम सब जानो जो आलू छे वो हमार दुनिया की प्रमुख खाद्य फसलों में एक छे और लगभग करोड़ों लोग ये भोजनक महत्वपूर्ण भाग मानान। अगर हम बात करूँ ये सब्जी के महत्व के, आलू में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम और अन्य कुछ पोषक तत्व पाए जनान जन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हुनान और यू ऊर्जा के लिए एक बहुत फल स्रोत हूँ। वी के दगड़ ये में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले हमको मिल जा। यही कारण से कि आर्थिक रूप जो कोई प्रकार वर्ग होते भी मैं यू समान रूप पसंद करी जा। वी के अलावा आलू खेत किसानों के लिए आय एक महत्वपूर्ण साधन छे। भारत विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में है एक छे। आलू है सागे अलावा चिप्स, फ्रेंच फ्राइज या फिर और खाद्य उत्पाद बना भी चालक वक्त में खाद्य उद्योग के लिए बढ़ावा मिलना करो और ये रोजगारक अवसर ले हमको मिलने आन। ये दिवस का मुख्य उद्देश्य आलू खेत के प्रोत्साहित करन, वी के अलावा खाद्य सुरक्षा का मजबूत बनून और किसानों के योगदान के लिए सम्मान दिन छे। ये दिवस हमारे टिकाऊ कृषि और पौष्टिक भोजन के महत्व के लिए देखूँ हमको आज के दिवस आलू के महत्व का समझून और किसानों के परिश्रम के सम्मान करने की प्रेरणा दी। खाद्य सुरक्षा और पोषण में आलू भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो, एक लीजिए एक उत्पादन और संरक्षण पर हमको ध्यान दें जाए। वी के अलावा हमारे सरकार से वो इस कति योजना चलाते रहूँ जन हमारे किसानों या फिर और मनखियों के लीजिए लाभदायक हों। एक ही ऐसी एक योजना से प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम में जय पूर्व अर्थ छे किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जो कि हमारे सरकार द्वारा किसानों के सौर ऊर्जा से जोड़न और उनक आय बढ़ोनक उद्देश्य शुरू करिए एक महत्वपूर्ण योजना छे। एक शुभारंभ साल 2019 में करी जा रही है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध कराउन, डीजल या फिर बिजली में वीक निर्भरता कम करन और स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा दिन छे। जैक माध्यम किसानों को एक तरफ तक खेती की लागत घटली और पर्यावरण संरक्षण में ले वहीं सहायता ले मिल ली। एक विशेषताओं की बात करूँ तो ये में किसानों के सौर पंप लगूने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। ये योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान दी जाए जल की किसानों के जो शेष राशि से वो ऋण में उपलब्ध कराई जाए। एक अलावा किसान अपन भूमि में सौर संयंत्र लगावेर, अतिरिक्त

कि जो बिजली बंसी भी कर बेच बेर अपन आय ले कमा सकना। किसानों के सिंचाई के लिए मैं लगातार और सस्ती ऊर्जा ले प्राप्त हूँ और मैं डीजल की खपत कम होने ईंधन खर्च घट चू और पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण ले कम हूँ। किला कि हम समझ सकनों जो सौर ऊर्जा छे वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक हूँ और वी के अलावा जो अतिरिक्त ए में बिजली बन छी वी बटे उन आय कमा बेर जो किसान छे उनको आर्थिक स्थिति ले मजबूत है जाए। हम समझ सकनों कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए जी एक चलाई गई योजना छे यू बहुत लाभकारी और भविष्य में ले बहुत भल होने वाली योजना छे। यू खेतबाड़ी क्षेत्र में साफ ऊर्जा के उपयोग का बढ़ावा दिनक दगड़ दगड़ किसानों की जो आय छे बढ़ोन में वी मिले महत्वपूर्ण भूमिका निभुने और हम समझ सकनों कि जो देशक सतत

हम समझ सकनु कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए जी एक चलाई गई योजना छे, यो बहुत लाभकारी और भविष्य में बहुत भल होने वाली योजना छे। यो खेतबाड़ी क्षेत्र में साफ ऊर्जा के उपयोग का बढ़ावा दिनक दगड़ दगड़ किसानों की जो आय छे बढ़ोन में भी मिले महत्वपूर्ण भूमिका निभुना है। और हम समझ सकनु कि जो देशक सतत विकास और किसानों कल्याण के लिए योजना चलाई छीन वी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सकती। कार्यक्रम अखिल बढ़नु और सुनु यो कुमाऊनी लोकगीत संकर प्रतीक स्वर में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, संदेशक बाद कार्यक्रम उत्तरायण में अखिल बढ़नु और सुनो आप लोगों के प्रहलाद सिंह मेहरा गाइयो कुमाऊनी लोकगीत।

ले बाबर धुसो बुंगड़ी ले माला अरे कूड़ो हुना चाटी खन्यो अरे त्योरो जन जाला ही माचा अरे कांचो त्योरो जले बिकोडा ई कली किले कांचे कड़ा।

0: श्रोताओं, प्रहलाद सिंह मेहरा गई कुमाऊनी लोकगीत अनले आप लोग सुनने लग रहे अच्छा कार्यक्रम में अगला आप लोगों के सुनने यो भेंट वार्ता मिशन लाइफ पानी की बचत आजक जरूरतक अंतर्गत जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा लीजिए कार्य करने वाले चौखुटिया अल्मोड़ा के युवा पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्टदगढ़ करी हुई श्याम भटकियो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। तो अचानक बखत में चल रहा पानी के संकट और पर्यावरण का होने वाले नुकसान के कम कशे करी जो खासकर हमारे पहाड़ों में यू काम कशे सकू यो विषय में और विकत अगर जो सरकार द्वारा मिशन लाइफ जल बचत और आजक जरूरत विषय पर जो कार्यक्रम चलाई जन्यान वी में हम बात करें युवा पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट जी दगड़ जन रोनीवाल सिंह चौखुटिया अल्मोड़ा इन्हों स्वागत कर हम अपन कार्यक्रम में।
1: नमस्कार भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे शामिल करने लीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो शंकर सिंह बिष्ट जी, सबसे पहले हम आपू था जानने चाहें अपन परिचय हमारे श्रोताओं का संक्षिप्त रूप में दियो।
1: मैं परिचय बात करी जाओ तो मेरा नाम शंकर सिंह बिष्ट छो और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सब हो गए दूर दराज वाल गाँव खजरान चनौल बटी में रहनी छू और एक मध्यम वर्गीय परिवार पर मैं आनू।
0: जी जी, तो शंकर सिंह बिष्ट जी, जैसे हम देखनो कि अपन जो सोशल मीडिया या फिर और कई कार्यक्रमों में देखनो हम अपन जो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता तो एक प्रेरणा आपके सबसे पहले काम बैठे मिली।
1: देखो हम जो लोग है ना, हम पूरा पहाड़ में रहने लोग जो गाँव दूर दराज में रहने लोग सब पहाड़ प्रकृति जंगल और गार्डन में हमेशा अपन बचपन बिता हम। तो देखिए एक भावनात्मक और एक इमोशनल अटैचमेंट तो पहले बहुत ही बनी थी, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाई करी धार हुई तो हम देखो कि यार हर जगह में जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो थे हमारे बात हम रही डिस्कशन हम और चर्चा हम रही और एक सब फुल मुद्दे रूप में सामने आम तो वही चीजें मैं अपन वापस पहाड़ों को प्रॉब्लम और ज्यादा फुल मात्रा में हम जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर एक बहुत फुल मुद्दे है वो जो कि आज पूरा जंगल जल खाक हो गई और साथ साथ में जो हमारे छोटे छोटे जलस्रोत थे जो पानी धार थे सीर थे नहर थे वो सब सूखम रही। हमारे जो जमीन छो जो हमारे खेती बाड़ी थे उन्हें जो उपजाऊपन छो या जो उत्पादकता छो वो धीरे धीरे कम होते जाम रहे और बहुत सारा जो हमारे तापमान छो वो बढ़ते जाम रहे तो यार प्रॉब्लम जो थे वो लगातार बढ़ते जाम रहे। तो ये चीज यार मन में विचार की एक यश काम करी जाओ जो कि विश्व में आज सब ज्यादा नीड हो जाए जो नीड फूल थी सब ज्यादा जरूरत जैसे तो वही तो एक प्रेरणा मिली यार की जो काम के करण से है लेकिन आज अगर हम लोग समझो और तो आने वाले पीढ़ी लीजिए एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ठाड़े जाएगी।
0: बिल्कुल, तो शंकर सिंह जी जैसे आपने बता की जो प्रेरणा से अपन जो पहाड़ में रोनो हम वीक जो संकट से उनका देखते हुए ज्यादातर आपको एक प्रेरणा मिली तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि जो आपको काम करता में जो की काम करता पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर जो पानी संरक्षण से पीने पानी संरक्षण या फिर जन सुख्या नाव से धारों लीजिए उन्हों आप में की काम कर सो।
1: देखो जब मैं काम शुरू करो तो जब 2020 में हम लॉकडाउन में घर आई तो वो एक बात देखो कि यार जंगल जो टाइम पे बर्फ पड़ थे जो टाइम पे ठंडी टाइम थी नवंबर दिसंबर में वो टाइम पे पूरा जंगल जो है वो आग धड़कम थी पूरा जंगल जो है जलम थी आग लागू थी चारों तरफ तो वहाँ पे एक विचार रहो तो वहाँ पे हम लोग काम करना आग बुझाना लीजिए आग लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करे फिर धीरे धीरे हम लोगों की जो नहोदार या गाड़ गधार जो हमारे तीर थे वो सुगम रही तो उन कसी पुनर्जीवित कर जाओ एक बार हम पढ़ो एक बार हम देखो तो फिर हम लोग ट्रेंच इंडिविजुअल लेवल पे पहले करना शुरू करो छोटे छोटे ट्रेंच हगाए पौंड हगाए खाल हगाए कंटू ट्रेंच हगाए तो वह बात धीरे धीरे थोड़ा सोशल मीडिया जरिया फिर लोग बागों से जुड़ हो पब्लिक जैसे सामुदायिक सहयोग फिर धीरे धीरे अलग अलग गाँवों में अलग अलग लोगों सहयोग युवाओं सहयोग आज बहुत सारे जगह में हम इस तरीके काम कर रहे हैं। दगड़ दगड़ में हम लोग स्थानीय प्रजाति जो हमारे से बांस बुराश काफल है यार ये सब चीजें के लिए प्लांटेशन करना कोशिश करना और उनको बचाना कोशिश करना साथ में फिर कुछ ननाद हम लोग एक टीम बने थे हिंगरी वॉरियर करने तो उन्होंने कोशिश करी कि हम कुछ स्क्रीनिंग ड्राइव चलो कुछ एक संडे फॉर मदर नेचर अभियान हम लोग चला कि हम लोग संडे संडे दिन जो नाम से या जो वर्किंग जो लोग रहने हैं तो उनको संडे दिन टाइम हो और रविवार दिन टाइम हो तो वो दिन हम लोग कोशिश करो कि नेचर पे कुछ पल बीताऊँ कुछ काम करूँ वह भी तो एक धीरे धीरे भावनात्मक लगाव जो हुनर बनल तो आने वाले टाइम में जो हम कोशिश करम रही जो प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या जो प्रॉब्लम हुआ सामने वो एक्चुअली जी थोड़ा ना थोड़ा कहना कहें जागरूकता आयर करें इस तरीके से छोटमा प्रयास हम लोग करें वही जो कि शायद एक परिणाम रूप में सामने आ रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम यो काम के आगे बढ़ा सके और अपन जो पर्यावरण से भी बचून में हम एक दो तक साथ दीवे
2: रह भी के मदद कर सकल।
1: बिल्कुल, जो काम बिना सामुदायिक सहयोग या बिना एक दूसरे का सहयोग नहीं है सकल, क्योंकि एक विश्वव्यापी समस्या है, एक विकराल और अवस्थूल समस्या है, मतलब एक सामुदायिक समस्या हम कह सकते हैं। समुदाय जो कुछ करण को कुछ करो तो छोटे तरीके हम लोग मिलवे ही सॉल्व कर सकते हैं।
2: बिल्कुल शंकर सिंह जी, जैसे हम जानो कि हमर जो पहाड़ छन इन हमर जन देशक कति जन ठुल ठुल नदी छन उनका जन्म दी छन, लेकिन हमर पहाड़ खुद एमे पानी की समस्या ले वंचित छन, और यहाँ जो जंगल छन जन एक ऑक्सीजन मुख्य भंडार उन जो बनाग लगू भी में लगातार जलते रहना, तो एमे आपू की कारण समस्या की के कारण है सकना, इनो जो उपाय है सकू की है सकना इनका कम करी जो।
1: देखो आज हम हिमालय क्षेत्र लोग छे ना, तो हमारे तो जो जंगल थे यो गाड़ गधर थे इन्हें भी दीवा हमारे जीवन छू, और हमारे पूरा जीवन प्रैक्टिस है, हमारे सभ्यता जो विकसित है वो इन्हें भी दीवा ही है।
2: पर
1: देखो कि हम पहली का बटी जब हमारे संस्कृति विकसित है, सभ्यता विकसित है, तो वो जंगल आग जो है बटी सांस्कृतिक या कह सकते कि कल्चरल प्रैक्टिस में एक्सी कि हम लोग आस पास थोड़ा साफ करना लीजिए या घास भी जलाना लीजिए आग लगा थी वो टाइम में, तो लेकिन वो टाइम में हमारे पूरा मिक्स फॉरेस्ट थी, एक बहुत संपन्न फॉरेस्ट थी, तो वो आग उठू फैलती, तो वो टाइम पे धीरे धीरे धीरे हम लोग आग लगाते रहे। उस बात बहुत तरीका चीज में आई, कई बार में साजिश आई, कई बार वही आज टाइम पे देखो तो आज टाइम में साफ सफाई लीजिए जो जैसे आज गांव लगातार बंजर हमी लोग बाग गांवों में नहन, तो आसपास लोग अपने झाड़ी झंकार साफ करना लीजिए आग लगा देनी, कुछ लोग करने की घास लीजिए आग लगा देनी, और साथ साथ में बहुत और जो समाज में निकल गए आम रही हम अभी प्रूफ देखे तो नहीं कह सकते कि यही चीज कारण से है ना, लेकिन जो समाज में निकल गए आम रही कि कुछ कुछ लोग कहने की लिस्ट जो लिस्ट वाल है जो ये लिस्ट निकलो सीधा जमा हुआ थे, तो वो जो लिस्ट है जैसे काम कर रहे हैं अपन कुछ फायदा लीजिए वह लीजिए वो आग लगा दी, कुछ शरारती तत्व जो थे बीड़ी सिगरेट वाल थे वो आग लगा दी, और कुछ एक द्वेष भावना और जलन भावना जब कुछ काम हो और एक दूसरे जलन भावना, ये बहुत तरीके की चीज है जो आज तक शायद और चीज है जिनको हम आज तक चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे समुदाय हो, चाहे सामाजिक संस्थान या निजी संस्थान हो, कोई ये तरीका आज तक प्रूफ

0: भी कह सकते हैं कि यूं ही कारण से जो आग लगना कारण है सकने, और ये हिमालय क्षेत्र में एक एकमात्र एक ये जो जंगल आग से एकमात्र इस प्रॉब्लम से जो पूरा एक ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जाल बुनमा, अगर ये आग लागल कम है जाल तो धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम सारा सॉल्व है जल के लिए कि ये आग लागने लगे जो कार्बन निकलम रहो मैं ग्लेशियरों में पड़म और धीरे धीरे जैसे कि मेल्ट करम रहो, साथ में और जो स्थानीय सॉयल सीड बैंक से वो खत्म हम रहो, जो हमारे पानी स्रोत से वो लगातार सूखते जामी, जो हमारे लोकल स्पीसीज हैं एक बार आग लग गई पूरा खत्म हो जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये आग उत्पन्न है। हम अगर एक बार ये आग हम कंट्रोल कर पाऊँ, एक ठोस नीति बना पाऊँ या सरकार में एक तरीका ठोस नीति कर पाऊँ और साथ साथ में अगर जनता जनता और समुदाय जागरूक है तो ये हम बहुत फुल एक जो समस्या हमारे सामने में आ रहा है वो सॉल्व कर पाऊँ।
1: बिल्कुल, जिससे आपने पता की जो जंगल में लगने वाली आग से भी मैं बहुत प्रकार कारण से हमारे समझ में होना और उन्होंने कहा कर जो मन की से वो अपन तरफ बैठी काम करो और एक सोच विचार कर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने कर्तव्य भी अपन निभोते वी का कम करी जा सकते और हमारे जो पर्यावरण से वी का बचाई जा सकते। तो संकट सिंह जी, जैसे कि हमारे जो सरकार मिशन लाइफ जल की बचत आज की जरूरत है कार्यक्रम चलाने लग रहे जैसे की पीने वाले पानी या फिर पानी बचत तक लीजिए कार्यक्रम चलाई जा रहा है, अपन के विचार सुन जैसे की पहाड़ में कैसे पानी का बचाई जा सको, जैसे एक खाल चाल या फिर इन निर्माण कर या फिर कोई और कारण आप के समस्या।
0: देखो हम लोग बात करने की हमको बचाते हैं लेकिन प्रकृति में बचाने वाला हम कौन हूँ, भले ही हम ये कह सकें कि गवर्नमेंटल जो प्रयास कर रही हूँ बड़ी हंसक नहीं हूँ भले हंसक नहीं, लेकिन हम अगर पहले साइंस को समझो तो जल कैसे बचल, जल जो जंगलों में एक्वाफेयर हम लाइकिन जो सब पहली वेल बचल, जो वहाँ पे घास हम वेल बचल, जो फिर वहाँ पेड़ पौधा हमारी जो जड़ से वो जो बारिश पानी होल वो नुल शरीर जो है रिसोल एक्वाफेयर में जल वहाँ रिचार्ज हो तो सब जगह बचल। अगर ये जंगलों में आग ऐसे लगते रहो एक्वाफेयर खत्म लाइकिन छू मॉल्स छू घास छू जड़ी बूटी से विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्पीसीज से वो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे जो पान छो लगातार बहते जाए। अब फिर जब वह बात हमारे एक लास्ट ये बच जाए कि यार हम ट्रेंचेस बनो खाल बनो खंतियां बनो और वो खाल खंतियों में बाद नमी में आ लो तो दोबारा से हमको वही प्रैक्टिस में जाना पड़ा कि हम वहाँ पेड़ पौधे लगो पेड़ पौधे लगो जब तो फिर लाइकिन आलू में घास आलू में अलग अलग प्रकार सीजन फिर जब वो पान के बचा तो एक लॉन्ग प्रैक्टिस तो हुई थी। तो सब पहले एक उपाय छो अगर पहाड़ों को बचाने से पहाड़ों में जो जल जो पानी किल्लत हमरे जो ये समस्या उत्पन्न हमरा हम देखो कि हर जगह जैसे देवप्रयाग में जैसे लोग बाग पानी लीजिए आंदोलन कर रहे या दरहाट में मिरई में यहाँ चौखुटी में बात करो तो सोनगांव में भी दिनपति लोग बाग कर सुन बहुत गाँव आज हूँ पानी लीजिए तरस मिले तो ये प्रॉब्लम जैसे अगर हम जंगलों आग बंद कर दें तो जल स्रोत जो हमारे सीर थी पहली बच्ची जो सीर फूट थी वो अपन आप जैसे वो जीवित है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने बता हम जो उपाय अगर हम सुझन हो या फिर सरकार ले कोई उपाय अगर कर चुके भी मैं सबसे पहले हमको आप ही ध्यान रखना पड़े की हमको वीक बचत कैसे करी जो या फिर भी संरक्षण कैसे करी जो और भी मैं जन पहाड़ जंगल छन उन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभा सकना। तो शंकर सिंह जी आप बातचीत के अपन अंतिम रूप देते हुए आपको तो ये जानना चाहूँ कि आप जो श्रोताओं का संदेश दिन चाला जो श्रोता हमें सुन लग रही या फिर जो नागरिक छन वीक के कर्तव्य हो।
0: देखो मैं अगर संदेश देना बात करूँ तो मैं एक बात करना चाहूँ की जो ये हमारे जीवन छो वो बिना जल बिना वायु बिना मिट्टी बिना पानी और बिना ताप ये बगैर हम लोग नहीं जी सकते। अगर यो ये हमारे पास चलो तो हम लोग बिना कोठी बिना बंगला बिना पैसा बिना वेकले जीवित रह सकते हैं। तो हमारे प्राथमिक जो जरूरत होने चाहिए जो हमारे ननाल जो अपने भविष्य बीजी जो चिंता होने चाहिए वो सब वो पहले हमारे जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जल वायु अग्नि जो ताप से जो मार्च से जो भोजन से वह लिए पहले चिंता होने चाहिए और वह लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो बाकी जो चीजें जो अब हमारे सुविधाएं से वो सेकेंडरी होने हैं तो यही मेरा कोशिश यही मेरा एक संदेश है।
1: बिल्कुल शंकर सिंह जी आपने बहुत भल बात कह की हम कहे जो जल जो जंगल छन या फिर जो डाव बोर्ड छन उनका जो कोशिश थी वो आप तरफ बड़े करनी पड़ी और आपको तो एक वास्तव में एक उदाहरण ले छा की जैसे की हम देख लू आप जन काम कर रख्यान पर्यावरण संरक्षण के लिए कति पौधारोपण या फिर कई चाल खालों निर्माण सुख्या जन नौ छन उनके लिए आप पुनर्जीवन तिबेर अपन जो समूह छे इस तरह मिलबेर आप कर जो सोमेश्वर घाटी चौकुट घाटी जगह गेवाड़ घाटी कही जहाँ वाले आप एक लीजिए बहुत काम कर रखे और वीकत अगर जैसे हम देखी कि हमें पता चली आप जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर पैदल यात्रा ले कर अच्छी और वीकत अगर कति जगह जो सड़क चौड़ीकरण या फिर पर्यावरण नुकसान दिनने वाले कोई योजना से उन्होंने अपन फिर जनोंदरण के लिए बहुत सफल नेतृत्व कर रहा। तो शंकर सिंह जी आप हमसे बात करी और हम ये आशा करूँ की जो आप जो अभियान आप चला रहा या फिर जो अपन काम जो अपन करने लग रहा अभी मैं आप सफल वाला और आप यो प्रेरणा स्रोत ले बनते रहा की जो नागरिक छन जो जनता से बोले देख भी जागरूक हो अपन काम देख भी जागरूक रहते रहो आप हम अगर बातचीत करी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं भेंट वार्ता में अपन लोग सुनने लग रहा अच्छा मिशन लाइफ

पैनिक बचत आजक जरूरतक अंतर्गत जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने चौखुटिया अल्मोड़क युवा पर्यावरण प्रेमी शंकर सिंह बिष्ट दगड़ करी हुई अपन दगड़ी श्याम भटक यो बातचीत।

श्रोता, यो पर्यावरण सन्देश दिने लोकगीतले आफ्नो लोकगुण सुनि जानकी ढुण्डियालक स्वरमा कार्यक्रम अघि बढ्नु और कर्नु आफ्नो दगड कुछ और बातचित। श्रोता उचालक बखतमा हम सब देख्नु जलवायु परिवर्तन दुनियाक सबुह ठुल समस्याओमा है एक छ। हमर पृथ्वीक जो औसत तापमान छ, वीमा हुने वाल वृद्धि और कभ टाइम बे टाइम हुने वाल बर्ख, बाढ़, सूख पड़न, चक्रवात ऊन या फिर और ले कति प्राकृतिक आपदा, इनों बहुत मुख्य परिणाम छन्। वीक दगड़ एमे जन मानव गतिविधि छन, जिसने कि जीवाश्म इतनों ज़्यादा उपयोग, जंगलों कटान और औद्योगिकरण एक समस्या के और बढ़ा रहा। बात करूँ एक जो प्रभाव छ मानव जीवन में हूँ, वी मैं अगर देखूँ तो जो सिद्ध प्रभाव छ मन की स्वास्थ्य पर पड़ छू। बढ़ने तापमान के कारण लू, निर्जलीकरण या फिर अलग अलग टाइप का संक्रामक रोग छन, उन्होंने खतरे बढ़ जा। वायु प्रदूषण और मौसम में बदलाव के कारण सांस संबंधी बीमारी बढ़ जा। एक अलावा खेती क्षेत्र में एक बहुत दुष्प्रभाव पड़ छू। वी के अलावा टाइम बेटा हुने बर्ख, सूखा कारण जो फसलों उत्पादन हो वी कम हों, जैल किसानों के लिए आर्थिक नुकसान उठाना पड़ छू। वी में खाद्यान्न उत्पादन में कमी होने हमार जो खाद्य सुरक्षा से वी मले बहुत ठुल खतर उत्पन्न है जा। एक अदगर एक तरफ देखूँ हम समुद्र जल स्तर में जो वृद्धि से वी कारण तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विस्थापन का सामना करना पड़ सकूँ। वहीं जो पर्वतीय क्षेत्र से उनमें जंगलों आग लगन या फिर वहाँ बढ़ने वाला तापमान या फिर मौसम बहुत अलग प्रकार होन एक बहुत ठुल प्रभाव पड़ेगा। वी में बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाले जनधनक जो ठुल हानि छे वी कारण बन छी। बात करूँ इनो जो बचावक उपाय छन, उन्होंने जलवायु परिवर्तनक समस्या है निपटने के लिए वृक्षारोपण सब है ठुल उपाय छे जै हम एक कम कर सकना। वी के अलावा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग का कम कर बेर। विगत दगड़ हम के सौर या फिर पवन ऊर्जा जैसे जन नवीकरणीय ऊर्जा छन, उनों ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें छे। अगर हम ऊर्जा बचून और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाते रहूँ तो हम के जलवायु परिवर्तन के कम करने में लाभ मिल सकते। श्रोता हम समझ सकूँ कि जलवायु परिवर्तन मनुष्य जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक ठुल चुनौती है। एक दुष्प्रभावों के कम करने के लिए सरकार, समाज और हर नागरिक के मिलवेर प्रयास करने होगा और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार जो व्यवहार छे वी का अपना बेर हम अपन उन्नी वाल पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के सुनिश्चित कर सकें।

श्रोताओं, दीपा चौहान और चंद्रदत्त सुयालक स्वर में गई यही गढ़वा लोकगीतक दगड़ हमारे आजक उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न हो। ऐला अपन दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दियो। नमस्कार। अपन लोग थोड़ी देर में सुन रहा उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार जन हमारे देहरादून केंद्र बठी प्रसारित करी जल। अपन लोग थोड़ी प्रतीक्षा करिया।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। अल्मोड़ा में 1000 से अधिक अग्निवीरों ने आज भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 1170 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। 6 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद आयोजित कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरव के भाव से सराबोर रहा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने सभी अग्निवीरों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश सेवा का अवसर केवल भाग्यशाली युवाओं को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, KRC और पूरा देश उन माता पिता का आभारी है जिन्होंने अपने पुत्रों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है।
2: आज आपने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन, साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने और आप पर आपकी यूनिट, कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फख्र हो। मैं मां कालिका से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति, बुद्धि और संकल्प प्रदान करें, ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें।
1: वहीं अग्निवीर की बहन ज्योति बोरा ने कहा कि उनके भाई को देश सेवा का अवसर मिला है और इस पर उन्हें गर्व है।
3: मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा और आज का सिक्रेट कोई का ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का पल है हमारे लिए।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के अंतिम दिन विभिन्न संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिन की शुरुआत देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना से की। इसके बाद उन्होंने एक बूथ अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा तीसरी बार फिर सरकार बनाएगी।
4: अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और जिस रूप से आपने UCC को लागू किया, भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं ना कहीं हर भारतवासी आपके मुख्यमंत्री पर गर्व करता है। गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे।
1: इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला बाईपास स्थित एक निजी कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, उद्योग जगत तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पार्टी की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से भी सीधा संवाद किया। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु और 5 लोगों के घायल होने की खबर है।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रधानमंत्री कार्यालय के समूचे नेटवर्क सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को गुणवत्ता युक्त प्रसाद उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामोत्थान परियोजना रीप ने स्थानीय उद्यम केदारेश्वर एंटरप्राइजेस के साथ गुणवत्ता युक्त प्रसाद उपलब्ध करवाने को लेकर अनुबंध किया है। यह योजना स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे यात्रा अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास भी शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: गुणवत्ता युक्त प्रसाद योजना के तहत ग्रामोत्थान परियोजना ने केदारेश्वर इंटरप्राइजेस को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका उद्देश्य केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रसाद उपलब्ध कराना और स्थानीय स्तर पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। योजना के तहत केदारेश्वर इंटरप्राइजेस श्रद्धालुओं के लिए पंचमेवा, ड्राई फ्रूट्स और श्री केदारनाथ मंदिर से जुड़े विभिन्न स्मृति चिन्ह तैयार कर रही है। इन उत्पादों की पैकेजिंग आकर्षक होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी रखी गई है। योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी है। केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह पहल स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: पौड़ी जिले की नगर पंचायत सतपुली में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में प्रतिभाग करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सतपुली नगर पंचायत क्षेत्र में नयार नदी पर निर्माणाधीन 56,34,97,000 की लागत से बहुप्रतीक्षित सतपुली झील का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जलाशय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि झील निर्माण से सतपुली उत्तराखंड के नक्शे पर एक नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र से होने वाले पलायन पर अंकुश लगेगा। बहुउद्देश्य शिविर में 4 दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही समस्या काउंटर पर 42 शिकायतें व 91 मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने तथा जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है।

0: राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष मैदानी जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। कल भी राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य जिलों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने, ओलावृष्टि और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अल्मोड़ा में 1000 से अधिक अग्निवीरों ने आज भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत।

पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सबकी वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं, और इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, ये हमें लूटते रहते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

0: राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम।
1: अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने भक्ति वंदन सुना। आइए भक्ति संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश का गाया ये भक्ति गीत।

0: मित्र मुकेश के गाए इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बेटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी

0: नितिन मुकेश के गाए इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुए हैं। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले के जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में सुनील नेगी। पहली मुख्य समाचार, अल्मोड़ा जिला का रानीखेत में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल वेकन देश सेवा की शपथ लिया। सरकारन बोली राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रांतिकरण कुनी नई नीति बनाई जली। राज्य में पिछला 36 घंटों का दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु और 12 लोग घायल। चमोली जिला का नीति घाटी में गोलबिटिक द्विदिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन करे जालू। और प्रदेश में मौसमन ली करवट, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिला का रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल वेकन देश सेवा की शपथ लिया। 6 माह की कठिन सिखलाई के बाद आयोजित कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरव का भाव से पूरी तरह जोशन भरियो छ। ये के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला अग्निवीरों ते सम्मानित भी करे गए। समारोह तय संबोधित करदावेरी ब्रिगेडियर विजयंत महादिकन सभी अग्निवीरों और उनका परिजनों तय शुभकामनाएं दीनी। उन बोली कि सेना में भर्ती वेकन देश सेवा को अवसर केवल भाग्यशाली युवाओं तय मिल दू। उन बोली कि भारतीय सेना KRC और पूरा देश का ऊँ माता पिताओं का आभारी छन जौन अपना पुत्रों तय राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित कैरियाली।
2: राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन, साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने और आप पर आपकी यूनिट, कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फख्र हो। मैं मां कालिका से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति, बुद्धि और संकल्प प्रदान करें, ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें।
1: प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रांतिकरण की दिशा में सरकार जल्दी नई नीति बनानी छ। ये संबंध में शिक्षा विभाग तय 1 माह का भीतर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर 1 माह का भीतर मंत्रिमंडल का समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दें। देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावतन बोली कि नई नियमावली लागू होने के बाद उन अशासकीय विद्यालयों को प्रांतिकरण का मार्ग प्रशस्त होलू जो कि प्रबंधन समितियां शासन तय राज्यीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध करा ली। उन बताई कि प्रस्तावित नियमावली में विद्यालय की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व, छात्र संख्या, कार्मिकों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता तथा सरकार पर पड़न वालू वित्तीय व्यवहार जिनी महत्वपूर्ण पहलुओं तय शामिल करे जालू। राज्य में पिछला 36 घंटों का दौरान हुई 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 12 लोग घायल हुए। चमोली जिला का लुआणी गांव का नजदीक आज सवेर लगभग 4 बजे एक इको वैन दुर्घटनाग्रस्त हुए गए। वाहन में सवार 6 लोगों में 3 की मौके पर ही मृत्यु हुई गए जबकि 3 अन्य घायल हुए। घायलों तक प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस का माध्यम से ऋषिकेश में स्थित एम्स भेजे गए। अरुणा अल्मोड़ा जिला में ब्याली हुआ एक दर्दनाक हादसा में ट्रैक्टर का गहरी खाई में गिन से 2 लोगों की मौत हुई गए। वही उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी का नजदीक एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई गए जबकि 3 अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार वाहन में कुल 5 लोग सवार छ। गंगोत्री धाम में गंग घाट पर स्नान का दौरान एक

0: महिला नदी में डूबण से मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनन अपड़ा 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास का अंतिम दिन विभिन्न संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन की शुरुआत देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना से कारी। एक बाद उन एक बूथ का अध्यक्ष का आवास पर कार्यकर्ताओं दगड़ी आत्मीय संवाद कारी। ये बीचम राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला बाईपास स्थित एक निजी कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल वेन उन शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों उद्योग जगत तथा समाज का विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधियों से संवाद कारी और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पार्टी की नीतियों पर विस्तार से चर्चा कारी। उन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित युवा सांसद कार्यक्रम में युवाओं से भी सीधा संवाद करी।
1: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है जो UTDP के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: चमोली जिला की नीत घाटी में गोल बिटिन 2 दिवसीय नीत एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन करे जालू। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना का दगड़ी तालमेल से आयोजित यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन तय बढ़ावा देण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तय नई पहचान दिलाण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जानी च। अल्ट्रारन में 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल छिन। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला धावकों तय ऊंचाई कम ऑक्सीजन और बदलता मौसम जनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सामना कर पड़ लो। जिला अधिकारी गौरव कुमारन बताई कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन तय बढ़ावा देण और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों तय प्रोत्साहित कंच।
1: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है जो UTDP के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और उनके लिए हमारे प्रशासन ने व्यवस्था निगरानी में लगा हुआ है। इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मराठी क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी।
0: श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अब आसानी से दर्शन करने श्रद्धालुओं तय 1100 रुपये शुल्क देण होलू। ये संबंध में श्री बद्री केदार मंदिर समिति BKTC नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करें। BKTC का मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगणन बताई कि यात्रा संचालन तय अधिक सुव्यवस्थित सुरक्षित और समयबद्ध बनाने का उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करी गया। उन बोली कि लगातार बढ़नी श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों और लंबी कतारों की समस्या तय नजर में रखी कर यू निर्णय लिए गए। राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज करे गया जैसे लोगों तय भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल। मौसम विभागन आगामी 2 जून तक प्रदेश का अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई। विभागन आज देहरादून टिहरी पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी करी छ जबकि शेष मैदानी जिलों को येलो अलर्ट जारी करी छ। गोल भी राज्य का कुछ पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य जिलों विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट प्रभावी रहलू। ये का दौरान तेज झोंकेदार हवाओं को चलन ओलावृष्टि और कखी कखी तेज बारिश होने की संभावना छ। मौसम विभागन चार धाम यात्रा पर आया श्रद्धालुओं और प्रदेश वासियों से मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकण तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील करी छ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मने जानू छ। ये दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्लन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को प्रकाशन शुरू कर छाई। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता का योगदान वे को इतिहास और समाज में वे की महत्वपूर्ण भूमिका तय याद करने का समय छ। हिंदी पत्रकारिता दिवस का अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन पत्रकारों और प्रदेशवासियों तय शुभकामनाएं दीनी। अपना संदेश में मुख्यमंत्री ने बोली कि हिंदी

0: पत्रकारिता लोकतंत्र की शक्ति आवाज रहे और समाज में जन जागरूकता बढ़ान तथा जन भावनाओं ते अभिव्यक्ति कन्मा ये की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। मुख्यमंत्री बोली कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समाज में शासन का बीच एक महत्वपूर्ण पुल का रूप में कार्य करनु छ। वही सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देन बेरिंग बोली कि निष्पक्षता विश्वसनीयता और जन प्रति की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा छ। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर। रानीखेत में अल्मोड़ा जिला का रानीखेत में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल वेकन देश सेवा की शपथ लिया। सरकारन बोली कि राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रांतिकरण कुनी नई नीति बनाई जली। राज्य में पिछला 36 घंटों का दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु और 12 लोग घायल। चमोली जिला की नीति में घोल बिटिक द्विदिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन करे जालू। और प्रदेश में मौसमन ली करवट, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट। ये कदगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम किसान वाणी सुनेर सब श्रोता दगड़ियों के मी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोता हमारे यो कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र सरकारक एक प्रमुख योजना छू। यह मुख्य उद्देश्य मवेशियों में खुरपका मुहपका और ब्रुसोलिस और जैसे खतरनाक बीमारियों का नियंत्रण और उन्मूलन करन छू। खुरपका मुहपक्का रोगक लीजिए सब गोर भैंस भेड़ बकार और सुअरों 100% टीकाकरण सुनिश्चित करण। यह के अलावा ब्रुसेलिस बचावक लीजिए 4/8 महीनक मादा बच्चियों टीकाकरण करण छू। यह बीमारियों का रोकणक लीजिए मवेशियों के हर 6 महीनक अंतराल पर मुक्त टीक लगाई जानी। यह प्रक्रिया साल में 2 चरणों पर जस मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में पूर हूँ। पशुओं स्वास्थ्य में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ोन और मांस डेयरी उत्पादकों को निर्यात बढ़ोन एक मुख्य पहलू छन। यह लीजिए आप अपन नज़दीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क कर फिर अपन जानवरों के लीजिए टीकाकरण बखत समय तय कर सकता। भारत में 2024 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमक तहत खुरपका मुहपका रोग टीकाकरण सफलता सब राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रमक तहत खुरपका और मुहपका रोगक बचावक लीजिए टीकाकरण 100% केंद्रीय सहायता के अंतर्गत हूँ। खुरपका मुहपका लीजिए गुणवत्ता प्रशिक्षण करी गई टीकों बखत पर आपूर्ति सुनिश्चित करणक दगड़ दगड़ हितकारकों के बीच जागरूकता पैदा करण और देशक सभी क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम कवरेज प्रतिशत पिछले वर्षक तुलना में बढ़ी छू। कुल मिलाकर पशुधन उत्पादकता पोषण प्रबंधन टीकाकरण और अन्य पशु चिकित्सा देखभाल कारकों में प्रभावित हूँ। टीकाकरण बीमारियों बोझ के कम कर फिर पशुधन उत्पादकता बढ़ोन में मदद करूँ। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वर्ष 2024 में हरियाणा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में भेड़ और बकारों सहित चारागाह भेड़ और बकारों की आबादी में प्रभावित टीकाकरण कवरेजक लीजिए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वैक्सीनक आपूर्ति शुरू करी। एक उद्देश्य कार्यक्रमक अनुसार निश्चित अवधि के लीजिए द्विवार्षिक टीकाकरणक माध्यम बटी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय बीमारियों के कमकरण और टीकाकरण का केवल एक दौर में ही चलाई जाना और यह कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं करी गई। तो यह लीजिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रमक लीजिए सबसे ठुल चुनौती किसानों के लीजिए पशुपालकों के लीजिए यही छू कि वो बखत पर उन्हें टीकाकरण कर फिर वो पशुओं के रोगों बट को नियंत्रित कर सकनी।

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 19,67,00,000 से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ,
4: श्रोताओ, कार्यक्रम आपको सुनान लग रही है भेंट वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर प्रगतिशील आलू कृषक शेर सिंह दगड़ प्रमोद पांडे की ओर भेंट वार्ता।
5: श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं श्रीमान शेर सिंह बिष्टी जी। बिष्टी जी रहने वाले हैं ग्राम बघर, विकासखंड कपकोट, जिला बागेश्वर के। आज हम बिष्टी से जानकारी प्राप्त करेंगे आलू के बारे में, क्योंकि आज हम मना रहे हैं आलू दिवस। तो विजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में।
6: धन्यवाद
5: विजी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आलू उत्पादक हैं, तो आप कुछ आलू फसल के बारे में हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताएं।
6: देखिए, हमारे पहाड़ में अधिकतर जो है हम लोग शिमला आलू पे कार्य करते हैं, शिमला आलू लगाते हैं, क्योंकि वो खाने में भी स्वादिष्ट है, काफी अच्छा होता है और मार्केट भी उसकी अच्छी है। लोग अधिकतर शिमला आलू को पसंद करते हैं, तो शिमला आलू को पसंद करते हैं। ये हमारे पूर्वजों से ही चला आ रहा है, इसी पे ज्यादा काम करते हैं
5: जी,
6: शिमला आलू।
5: तो भैया, शिमला आलू आप बता रहे हैं, ये एक आलू की प्रजाति है, तो ये शिमला आलू को हमारे जो आलू उत्पादक भाई है जो लगाना चाह रहे हैं आलू, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे?
6: वो हमारे उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर विभाग ये आलू का बीज उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग शिमला आलू खरीद के क्रय करते हैं। वो जब क्रय करके फिर किसानों को जो है कम दाम में उपलब्ध कराते हैं। उनको पहले हमें डिमांड करनी पड़ती है, हमें कितना बीज चाहिए।
5: अच्छा,
6: वो हमें हॉर्टिकल्चर विभाग में जो है उपलब्ध करा देता है शिमला आलू,
5: यानी कि उद्यान विभाग से हम इसको ले सकते हैं।
6: बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से।
5: आज हम देख रहे हैं ना
6: जी जी,
5: कि आलू जो उस हिसाब से पहले हमारे जो पूर्वज थे वो उगाते थे आलू, अब आजकल धीरे धीरे आलू उगाने की परंपरा वो कम हो गई है, आलू लोग कम उगा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसका?
6: कारण कुछ नहीं, आज की डेट में मैं तो ये देखता हूँ जो मैं कार्य करता हूँ, नहीं उगाने कारण तो अधिकतर जो है प्लान क्या है, प्लान भी नहीं है। एक ये फैशन, देखो गांव घरों में देखिए आप, सारे खेत पूर्वजों से जो सदियों, जिनका नाम हम नहीं जानते, हमारे पूर्वज उन्होंने हमारे यहाँ भेड़ जंगल को खोदा काटा, वो हम न जाने कितनी पीढ़ियां उसको आबाद कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसको बंजर कर दिया लोगों ने
5: जी।
6: अगर जो रिवर्स प्लान करें लोग, जो शहर गए हैं, आइए गांव में आए, दोबारा खेती करें, तो उसमें जो है काफी रोजगार यहाँ पर और अर्थव्यवस्था भी काफी फर्क पड़ेगा, गांव की भी पड़ेगा, शहर हमारे जिले का भी पड़ेगा, प्रदेश का भी, देश का भी जो है अर्थव्यवस्था पे काफी फर्क पड़ता है, लेकिन कार्य करें उसमें
5: जी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो भी कृषकों को काफी प्रोत्साहन दे रही है।
6: नहीं, सरकार की तो चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तराखंड सरकार की हो, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं आज चला रखे हैं हर क्षेत्र में, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर,
5: बिल्कुल,
6: चाहे मत्स्य हो, चाहे पर्यटन हो,
5: बिल्कुल,
6: स्वरोजगार में चाहे ये कोई भी आप जैसे छोटा मोटा उद्योग कर सकते हैं उसमें।

0: काफ़ी हेल्प कर रही है, तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं। देखिए बागवानी के क्षेत्र में 80% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार दे रही है।
1: आप कौन कौन सी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं?
0: मेरे पास तो अभी जो मैंने रिवर्स प्लान करा, पहले मैं भी शहर में था, मेरे बच्चे 18 साल यहीं अल्मोड़ा शहर में रहे, तो मेरी घरवाली भी आज गाँव में कार्य कर रही है, गाय भैंस पाल रखे हैं। मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग, सबसे पहले मैंने हमारे यहाँ ग्राम्य फेस्टो था
1: जी,
0: उन्होंने मुझे मार्गदर्शन करा बागवानी के क्षेत्र में
1: जी,
0: तो मैंने 500 प्लांट कीवी के लगाए और 1200 प्लांट मैंने एप्पल के लगाए, जिसमें से रूट स्टॉक और सीडलिंग बेस में दोनों ब्रेक है मैंने, हाई डेंसिटी में भी लगाए थे। फिर मत्स्य विभाग से भी मुझे जो है अभी 10-10 पॉन्ड के दो तालाब मैंने बना रखे।
1: अच्छा,
0: स्वरोजगार। बाकी सब्जी उत्पादन का, मैं सब्जी आलू का कार्य करता हूँ, आलू पे कार्य करता हूँ, बाकी जो है शिमला मिर्च, गोभी, जो भी हमारे यहाँ मूली, कई प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, उस पर भी कार्य करता हूँ।
1: कितना आलू उगा लेते हैं आप?
0: बस मेरे पास साल भर में मैं एक बार लगाता हूँ तो 10 से 15 क्विंटल करीब हो जाता है।
1: 10 से 15 क्विंटल आप आलू की उपज प्राप्त करते हैं, तो आलू में सरकार कौन सी सब्सिडी प्रदान कर रही है?
0: बीज में सब्सिडी, आलू में तो बीज में सब्सिडी देती है।
1: कितना प्रतिशत सब्सिडी?
0: 50% सब्सिडी पे जो है उपलब्ध कराती है बीज हम।
1: बीज जी, यानी कि आपको अगर बीज लेना है तो 50% जो है वो सरकार आपको सब्सिडी देगी, 50% आपको खुद लगाना।
0: जी जी
1: बीजी, कितने समय में आलू की एक अच्छी फसल तैयार हो जाती है?
0: वैसे अगर अच्छी फसल तैयार करनी है कम से कम 5 महीने, जैसे हमने आलू लगाया तो 5 महीने बाद उसको हार्वेस्ट कर उसको खोदें तो बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट भी और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है
1: जी। और हमारा युवक आज बेरोजगार बैठा है
0: जी,
1: अगर वो चाहे तो आलू के उत्पादन करके वो एक रोजगार प्राप्त कर सकता है।
0: आलू करे, आलू में बहुत अच्छा आज रेट देखे, हमारे पहाड़ के आलू का रेट, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हार्वेस्ट करता हूं मैं, जब खुदाई करता हूं तो वहीं पर लोग पहुंच जाते हैं, 30 से 35 रुपए केजी हमारा शिमला आलू चले जाता है घर से। अगर हम 10 क्विंटल भी अगर उत्पादन करें तो हमारा अच्छी खासी जो है इनकम हो जाती है। उसके साथ साथ एक आलू ही नहीं, उसके साथ अन्य सब्जियां भी,
1: बिल्कुल,
0: गोभी पे कार्य कर सकते हैं, ब्रोकली पे कार्य कर सकते हैं, चुकंदर है जो मार्केट, करेला है, लौकी है, भिंडी है, कई प्रकार की सब्जियां हैं, हर सब्जी में जो है कार्य कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे मन में हमने ये ठान ली कि हमें कार्य करना है तो हम कार्य कर सकते हैं।
0: नहीं, अगर हमने आगे बढ़ना है, अपने को एक खुशहाल रखना है, अगर अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक खुश रखना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगी।
1: बिल्कुल करनी पड़ेगी।
0: इस माटी जो हमारी ये धरती माँ है, ये हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन केवल उस धरती माँ को हम कैसे संवारे, कैसे श्रृंगार करें उस माँ का,
1: ये हमारे हाथ में,
0: ये हमारे हाथ में।
1: बीजी अच्छा आप ये बताइए, आलू आपने कितनी नाली में लगा रखा है?
0: मैंने आलू 4-5 नाली में लगाता हूँ, बाकी मेरा अन्य काम है बहुत।
1: बीजी आप बता रहे हैं कि मैंने 10 क्विंटल आलू लगा रखा है
0: जी
1: जी, और आप लगाते हैं शिमला आलू
0: जी,
1: तो इसके अलावा हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में एक आलू की प्रजाति और है, कुफरी चोटी
0: जी,
1: आप वो नहीं लगाते?
0: नहीं, अभी तक तो मैंने उसको लगाया नहीं, देखता हूँ इस बार, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट बार, अब अभी तो समय निकल गया, नेक्स्ट बार उसको भी लगाने का प्रयास करूँगा, उस पर अभी हमें क्या वो आता है।
1: और खाद कितनी डालते हैं?
0: हमें गोबर डालते हैं, गाय और भैंस पाल रखे हैं हमने, तो उन्हीं का गोबर डालते हैं हम, तो टोकरी के हिसाब से जो है एक खेत में हम डालते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में डालते हैं, जितना आलू तो जितना अगर हम पोषक तत्व तो दें, गोबर दें उसको, और जैसे सूखी पत्तियां जंगल से
1: जी
0: अगर हम लाएं, अगर उसको हम आलू जब बुआई करते हैं, अगर वो उसको हम डालें, जैसे कोकोपीट होता है बांस का, इस तरीके से हम खेत में डालना, तो फिर देखें और आलू बहुत सुंदर और साफ भी होगा और पैदावार भी बहुत अच्छी होगी।
1: अच्छा
0: जी,
1: आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी फैल गया है, और जंगली सुअर जैसे कि है वो हमारे आलू को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, आपके इलाके का क्या हाल है?
0: जी इसमें भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, नुकसान है, जानवर बहुत हैं, काफ़ी मात्रा में बंदर हैं, सुअर हैं, तो ये देखो ये पहले भी हुआ करते थे
1: जी,
0: ऐसा नहीं कि पहली बार आए हैं यहाँ हमारे पहाड़ों में,

0: तो ये इसके लिए तो स्वयं हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए हमें तारबाड़ आजकल देखो एग्रीकल्चर से घेरबाड़ भी मिल रहा है, चैन फेंसिंग फर्स्ट क्लास, चैन फेंसिंग कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, अगर थोड़ा सा बद हुआ है तो पहरा भी कर सकते हैं, अगर हमें इनकम करनी है तो उसको पहरा भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हाँ। तो अगर हमने अपने आलू को बचाना है तो हमें उसके लिए पहरा तो करना पड़ेगा, या जो कोई भी उपाय हो सके वो हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि मैं बागवानी भी करता हूँ।
0: हाँ।
1: तो बागवानी में कौन कौन से पौधे आपके पास हैं?
0: बागवानी में मैंने 500 प्लांट कीवी लगा रखा है, जो चार वैरायटी होते हैं, एलिसन, हेवर्ड, मोंटी, ब्राउन, 500 प्लांट। और इस बार मैंने फिर गोल्डन कीवी भी लगा रखा है कुछ प्लांट।
1: अच्छा,
0: गोल्डन कीवी। बाकी एप्पल पे काम करता हूँ।
1: कितने पौधे
0: हैं एप्पल के? मेरे 1000 प्लांट हैं, जिसमें से 400 प्लांट मेरे शील्डिंग बेस में, उनकी दूरी ज़रा ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्लांट बड़े होते हैं, बीज बहुत होते हैं, और 600 प्लांट मेरे रूट स्टॉक M3501 में।
1: अच्छा,
0: क्योंकि M3501 हमारे यहाँ M9 पे भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन पानी की थोड़ा कमी हुई तो क्योंकि M9 में ज़्यादा पानी थी, M3501 में जो है पानी की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है, न सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती
1: है। अच्छा, और इसके अलावा सब्जी में क्या क्या है?
0: सब्जी में मैं टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, कद्दू, लौकी, तुरई, करेला, राम करेला, मतलब जो भी हमारे यहाँ, ब्रोकली, ये चीज़ों पर कार्य करता हूँ।
1: अच्छा, आप बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, आलू तो आपका मुख्य व्यवसाय है ही है, साथ में आप बागवानी कर रहे हैं,
0: मत्स्य
1: कर रहे हैं, और इसके अलावा सब्जी उत्पादन भी आप कर ही रहे हैं। बीजी, अब बात आती है बिक्रे की, बेचते कहाँ हैं?
0: देखिए, सब्जी का तो मेरा लोकल मार्केट जैसे कपकोट, भराड़ी और बागेश्वर में हो जाता है, और कीवी और एप्पल का हमें केवल मेहनत करनी है, हमें उत्पादन करना है और उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी आजकल मार्केट है क्वालिटी पे, तो स्वयं जो है यहीं पर हमारे पास कॉल आ जाते हैं और यहीं पर खरीदार आ जाते हैं घर पे ही। बाकी ट्राउट का क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने ITBB और SSB के साथ MOU किया हुआ है, जो भी किसान जो है उत्पादन कर रहे हैं तो वो सीधे बिचौलियों को छोड़ दिया, सीधे जो है ITBB और SSB का हम सप्लाई करते हैं।
1: अच्छा, 1 किलो ट्राउट की जो कीमत
0: जी
1: आप क्या रेट से देते हैं?
0: देखो, जो MOU है ITBB
1: ट्राउट केवल,
0: ट्राउट जो है मेरा 475 रुपये किलो अभी जा रहा है, बाकी प्लस उसमें 150 रुपया KG भाड़ा ट्रांसपोर्ट चार्ज वो सरकार वहन करती है वहाँ।
1: अच्छा, यानी कि काफ़ी फायदा आपको इसमें है।
0: यदि 625 रुपया हमें पड़ जाता है वहाँ छोड़ने में
1: जी। तो जी, आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, आलू पर आपने अच्छी बहुत सारी बातें हमें बताई, अब चलते चलते आप हमारे जो और सुनने वाले श्रोता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, कार्य करें, मेहनत करें, इस माटी को, इस मातृभूमि को जो बंजर पड़ चुकी है इसको आबाद करें और स्वयं आगे बढ़ें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं और इस धरती माँ को संवारें, श्रृंगार करें, एक सुनहरा बनाएं, तो इसे जो है हमारे जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो ज़्यादा दूर नहीं
1: होगा जी। तो विजी, आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता, आप सुन लग रचा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर प्रगतिशील आलू कृषक शेर सिंह दगड़ प्रमोद पांडे भेंट वार्ता।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में

0: सुनू, क्षेत्र संगठित भेंटवार्ता, ग्राम कटारमल पोस्ट कोशी अलमाड़क उन्नत काश्तकार बलवंत सिंह बिष्ट दगड़ करी गई यो क्षेत्र संगठित भेंटवार्ता।
1: श्रोता मित्रों, आज हमारे दगड़ छन श्री बलवंत सिंह बिष्ट जी, जो कटारमला रोनी वाल छन और एल अपन खेत पैत कराने लाग रही और दगड़ दगड़ वो पशुपालन न कराने लाग रही। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में अपन स्वागत छू।
2: धन्यवाद।
1: तो बिष्ट जी, एल अपन खेत पैत में के कारोबार कराने लाग रहा?
2: एल हम खेत में मडू झुंगर और ये कौन ये रखी हुई बात, यो 10-15 दिन बाद फिर गहत भट रेंस मांस ये बोल कर हम।
1: तो खेत पैत करना लीजिए, आपके पास एल लगभग लगभग पदुक जमीन छू?
2: मेरे पास 25 नाई छू।
1: 25 नाई जमीन में एल अपन मडू मंदिर झुंगर और कौन ये वगैरह
2: 5-7 दिन बाद फिर गहत भट रेंस मांस।
1: तो कदुक मात्रा में अपने पास हजाय हो?
2: पहले तो बहुत ज्यादा हुई थी, 4-5 बोरी झुंगर, 3-4 बोरी भट, 3 बोरी गहत, और अब बहुत कम होने पर। अब उसमें की 50-60 किलो मधु है जहाँ, और 30-40 किलो भट है जहाँ, और थोड़ी बहुत भैंस है जानी ये है जहाँ।
1: तो यो कम होने का मुख्य कारण आपको क्या समझना लगा?
2: जंगली जानवर, सुअर, बंदर, और फिर मौसम बहुत मार पड़ने, ठीक टाइम पर बारिश नहीं होने।
1: अच्छा, आज के वक्त में जस बाजारों में ये जो मांग छू ज्यादा छू
2: ज्यादा,
1: तो और वैज्ञानिक तरीके ला आज वक्त में हमारे पास आ गई, अगर हम यो तकनीकों को अपनो नो तो के कारगर फायदा सको हम उनका?
2: पर सब बारिश का ऊपर बात भाई, हम कोई सिंचाई नहीं भाई, बारिश होली तो सब बढ़िया नाज है जा।
1: अच्छा।
2: और फिर जंगली जानवर जो बंदर सुअर ये ज्यादा है, और आवारा पशु ज्यादा है, ज्यादा कम हो गए।
1: आपको खाद को प्रयोग कर सा?
2: गोबर खाद।
1: पास पशु को दुख
2: एक भैंस तो बल दुखन, एक गोसो
1: भैंस दूध देनी छो?
2: हाँ।
1: एल को दुख दूध देना
2: वो 8 लीटर?
1: तो एल बाजार में लग रहा नॉल?
2: मैं दुकान से खुद।
1: अच्छा, आप खुद दुकान में आपको दूध बिक रहे?
2: दही और लस्सी वही बेचता हूँ।
1: तो कदूक दूध लगभग लगभग आपको दुकान में घर पे बेचना लग रहा?
2: 6 लीटर
1: 2 लीटर आप
2: घर
1: खराब लीजिए। तो कदूक फैद चितुण लग रहा?
2: फैद हूँ मैं।
1: पहली और आज में खेत करण में कदू अंतर हो?
2: बहुत अंतर है।
1: अच्छा,
2: पहली फसल बहुत ज्यादा होती, जमीन ले ज्यादा मात्रा में अनाज बोचे हम, अब कुछ कम कर हमूल। अब जैसे जब 25 नाई जमीन में बोचे, अब 10-12 नाई में बोनू, जो दूर है खेत छोड़े लिया हम।
1: आज के वक्त में सरकार ने बहुत ज्यादा प्रेरित करने लग रही कि जो हमारे जो पुराने जमाने में मनखी खेत कर छी जस मडू मदर जस जो आपको करना ना लग रहा, तो आज के वक्त में अगर हम एक बढ़ावा दूँ और रोजगार की समस्या होने लग रही, ये समस्या का कम करना के लिए वैज्ञानिक तरीकल और युवाओं का प्रेरित हम कैसे कर सकते हैं?
2: युवाओं तो प्रेरित होनी उम्र के आप जंगली जानवरों को ज्यादा नुकसान को उम्र दिल टूट गो। आप एक तो फिर मौसम ऊपर लगे, बारिश कम होने, बारिश वो टाइम पर नहीं होने। अब जैसे हम बोले मडू पर रखो, एल मडू जामनो, अब ये बात बारिश नहीं होली तो सब खत्म हो जाए। अब ये बात 15 दिन बाद हम जून में हम उम्र भट गहत बोलू मैं।
1: तो एल अपन ये एक दगड़ दगड़ कुशाणी वगैरह के
2: वो तो घर आसपास कर हम मिर्च फिर्च जो है, और जैसे लघू को लौकी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, तो घर में ही बोल एल के ना लग ठंडा दे रिखो उनको और चढ़ नहीं लगे।
1: तो इनका
2: बीन हरी हमारे पास है।
1: अच्छा, बाजार में
2: फरा नहीं
1: आप उनको भगत में लगाइए बीन से?
2: बीन हम एक घंटा ही लगे कि बीन।
1: अच्छा,
2: और कुछ बैंगन सन, बैंगन वो जो हमारे पुराने पेड़ सन वो कटिंग करके वो ढक ढूंढ जाड़ो देना में फिर आया, फिर बैंगन शुरू हो जानी ऐसा मिर्च।
1: तो आप जो ये बीज वगैरह जो पैद कर सा ना
2: घर का बीज भी हमारा
1: घर का बीज
2: बिल्कुल। हाँ,
1: ये बीज कशिक बढ़ू आप?
2: हम ये सो जब तोरिया छो
1: जी,
2: जब तोरिया बिल्कुल पक हो जाए उनको हम घाम में धरते सूख जाए, उसके बाद उसके धरिया रोल जब हमको बीज निकालना उनको तोड़े उनको सब बीज टटकर लेना उनको ऐसे लौगी बीज ऐसे गद्दोल बीज गद्दू धर दिन हम वो बाद में पक्का है जाऊँ बढ़िया है जा। शिवरात्रि दिन को हम काटनो भी फराव बढ़ो उसे भी उछले खानो हम, और बीज बिल्कुल घर का भर सब
1: हमारे सुनने वाले श्रोताओं का। आपको क्या जानकारी दिला कि कशी वो एक उन्नत खेत कर सकनी? बीख लीजिए उनका अनुभव छू साझा करो।
2: उमें यसो जरा खेत में जरा हल वल जोतना ये करना, और उसकी गुड़ाई करना, निराई करना, और अगर ऐसा करेंगे बारिश होगी तो टाइम पर फिर अनाज तो होगा ही होगा। मैं तो सुबह इनसे यही कहता हूँ कि जितना भी हो सके अपना मेहनत करके करना ही चाहिए, इन लोगों को जमीन बंजर नहीं करनी चाहिए। तो ये जल सबको यह प्रेरित करूँगी कि कुछ मेहनत करनी चाहिए, और बाण गुणों और गुड़ाई गुड़ाई निराई मेहनत करवे के ने हुनेरे भे बराबर बरकत नहीं लेगी हमको बराबर खेती वेती करम पड़नी भाई।
1: तो अपुल हमारे सुनने वाले श्रोताओं को पहली जानकारी दी, अपने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोता आप सुन लग रहा क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता ग्राम कटारमल पोस्ट कोशी अलमाड़ा उन्नत काश्तकार श्री बलवंत सिंह बिष्ट दगड़ करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता कार्यक्रम आगे आपको सुनान लग रहा लोकगीत समूह स्वर में।

श्रोताओं आप सुनन लाग रहा छा समूह स्वर में गई यो लोकगीत और यही लोकगीत दगा हमर आज किसान वाणी कार्यक्रम इन लगा संपन्न हो आप दगा भो एक नई अंक में फिर भेंट होल। हमार यह कार्यक्रम के प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एल आज्ञा दियो नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी FM 100.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले।
1: पली मुख्य समाचार। अलमर जिला करणखेतम 1170 अग्निवीरुल भारतीय सेना में शामिल हबीर देशक सेवाक शपथ ली। सरकारल को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरणक लीजी नई नीति बनाई जाल। राज्यम पिछड़ 36 घंटों 5 अलग अलग दुर्घटनाओं 11 मैसूक मौत 11 घायल। चमोली जिलक नीति घाटीम भोबटी द्विदिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन करी जाल। और प्रदेश मौसम बदल गो, देहरादूनक दगड़ और जिलों बहुत द्योहुणक ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तारल। अलमर जिला करणखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटरक ऐतिहासिक सोमनाथ मैदानम 1170 अग्निवीरुल भारतीय सेना में शामिल हबेर देशक सेवाक शपथ ली। 6 महीनक कठिन प्रशिक्षणक बाद ही कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरवक भावल सराबोर रो। यह मौक पर बहुत भल प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों के सम्मानित लगी गो। समारोह के संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर विजयंत महादिकलल सभी अग्निवीरों और उनर परिवार वालों के बधाई दी। उन्होंने कहा कि फौजम भर्ती है बेर देशक सेवाक मौक सिर्फ किस्मत वालों के मिलो। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना KRC और पूरे देश उन इस बौजूक आभारी छू जिन्होंने अपन चल राष्ट्रक सुरक्षा लीजी समर्पित कर है।
2: आज आपने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने और आप पर आपकी यूनिट कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फख्र हो। मैं माँ कालिका से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति बुद्धि और संकल्प प्रदान करें ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें।
1: प्रदेश राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरणक दिशम सरकार जल्दी नई नीति न्यायवाल छू। यह संबंध शिक्षा विभाग के एक महीने भीतर प्रस्ताव तैयार करनक निर्देश दी जारी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर बेर एक महीने भीतर मंत्रिमंडलक सामने प्रस्तुत करनक निर्देश दी। देहरादूनम शिक्षा विभागक समीक्षा बैठकम डॉक्टर रावतल को की नई नियमावली लागू होने बाद उन अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरणक मार्ग प्रशस्त होल जिनर प्रबंधन समिति शासन के राजकीयकरणक प्रस्ताव उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली विद्यालयक जमीन उपलब्धता और स्वामित्व स्कूली नांतिनुक संख्या कार्मिकों को वरिष्ठता पदों की आवश्यकता और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय व्यवहार जस जरूरी पहलुओं के शामिल करी जाल। राज्यम पिछड़ 36 घंटों हई 5 अलग अलग दुर्घटनाओं 11 मैसूक मौत है जबकि 11 जनी घायल छी। रुद्रप्रयाग जिले में सड़क दुर्घटना में 3 जनियों की मौत और 5 मैस घायल हैगी। चमोली जिलक लौणी गांव के नजदीक आज रत्ती लगभग 4 बजे एक इको वैन दुर्घटनाग्रस्त है। गाड़ी में सवार 6 लोगों बटी 3 झणियाक उतनी मौत है जबकि 3 झनी घायल हैगी। घायलों के प्राथमिक उपचारक बाद एयर एम्बुलेंसल ऋषिकेश स्थित एम्स भेजी गो। वहीं अलमर जिलम बेईहई एक्सीडेंट ट्रैक्टर गहरी खाई में घुरनल 2 झणियाक मौत है। वहीं उत्तरकाशी जिलम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानिक नजदीकम बेई रात एक कार दुर्घटना में 2 झणियाक मौत है जबकि 3 घायल हैगी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में कुल 5 झनी बहरे छी। एक दगड़ गंगोत्री धामम गंगा घाट पर स्नान करते बखत एक सैनिक गाड़म डूबणल मौत है गे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनल अपन 3 दिनी उत्तराखंड प्रवासक आखिरी दिन विभिन्न संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लियो। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनक शुरुआत देहरादून स्थित तपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूछ करबेर करी। एक बाद उन्होंने एक बूथ अध्यक्षक घर जबेर कार्यकर्ताओं दगड़ आत्मीय संवाद करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला बाईपास स्थित एक निजी कॉलेज में है प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल हैं। उन्होंने शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों उद्योग जगत और समाजक विभिन्न वर्गक प्रतिनिधियों हेते संवाद करो और केंद्र और राज्य सरकारक जन कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों पर विस्तारल चर्चा करी। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में है युवा संवाद कार्यक्रम जवान नंतिनु हेते बात करी। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। चमोली जिला के नीति घाटी में भोबटी द्विदिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन करी जाल। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना समन्वय हई यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन के बढ़ावा देण और सीमावर्ती क्षेत्रों के नई पछाण दिलाणक दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही। अल्ट्रा रन में 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक विभिन्न श्रेणी छी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों के ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करन पड़ल। जिलाधिकारी गौरव कुमारल बता कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों पर्यटन के बढ़ावा देण और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहित करण छू।
3: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है जो UTDP के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और उनके लिए हमारे प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है और इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मराठी क्षेत्र को एक नई पहचान मिली।
1: पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवारल बता कि आयोजनक लीजिए भारतीय सेनाक दगड़ समन्वय स्थापित कर सब जरूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करहनी। श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में अब सुगम दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के 1100 रुपये शुल्क देण होल। यह एक संबंध में श्री बद्री केदार मंदिर समिति BKTC नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर है। BKTC के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ल बता कि यात्रा संचालन के ज्यादा भल सुरक्षित और समयबद्ध बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू करी जा रही। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, प्रतिकूल मौसमक परिस्थितियों और लंब कतारों की समस्या के देखते हुए यह फैसला ली जा रहा। राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद झमाझम द्यो हुणल तापमान गिरावट दर्ज करी गए। जैल मैसू के बहुत उमाव और उमसल राहत मिल गए। मौसम विभागल आणवाल 2 जून तक प्रदेशक ज्यादातर जिलों द्यो हुणक संभावना जते रहे। विभागल आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी और पिथौरगढ़ जिलों में कई कई भौत द्यो हुणक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहो, जबकि बागबची मैदानों जिलों का लीजी येलो अलर्ट घोषित करी जा रहो। भोले राज्य कुछ पहाड़ी जिलों ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों खासकर मैदानी क्षेत्रों के लीजी येलो अलर्ट जारी कर रहो। यो दौरान तेज पवन पड़नक, डाव पड़नक और कई कई भौत द्यो हुणक संभावना छू। मौसम विभाग चार धाम यात्रा पर आई श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों हेते मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर रुकनक और प्रशासन बटी जारी दिशा निर्देशों का पालन करनक अपील कर रहे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जा रो। यही दिन साल 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्लल हिंदी पहले समाचार पत्र उदंत मारतंडक प्रकाशन शुरू करो। यो दिन हिंदी पत्रकारिता के योगदान, वैक इतिहास और समाज में वैक महत्वपूर्ण भूमिका के याद करना मौक छो। हिंदी पत्रकारिता दिवसक मौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल पत्रकारों और प्रदेशवासियों के शुभकामनाएं दी। अपन संदेश में मुख्यमंत्री को कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्रक सशक्त आवाज रही छू और समाज में जन जागरूकता बढ़ाणक और जन भावनाओं के अभिव्यक्ति दिणम यह एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता एलब बखतम समाज और शासन बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु रूप में कार्य कर रहे। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहितक भावना आज ले पत्रकारिता मूल आत्मा छू। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। अलमर जिला के रणखेत में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल हबे देशक सेवा शपथ ली। सरकारल को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरण के लिए नई नीति बनाई जल। राज्य में पिछड़ 36 घंटों 5 अलग अलग दुर्घटनाओं 11 महसूक मौत, 11 जनी घायल। चमोली जिला नीति घाटी में भोबटी

द्विदिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन करी जाल और प्रदेश मौसम बदल गो देहरादूनक दगड़ भते जिलों में भते दियो हुणक ऑरेंज अलर्ट यह के दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

FM 14.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के ठीक 7:40 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सौदागर फिल्म के गीत के साथ। गीत को आवाज दे रहे हैं आशा भोसले। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया प्रेम रोग फिल्म का गीत। गीत लिखा है नरेंद्र शर्मा ने और इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में प्रेम रोग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया हीना फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

हिना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आई फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडेकर का गाया प्रेम गीत फिल्म का गीत। गीत लिखा है इंदीवर ने और इस गीत की धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

सुरेश वाडेकर के गाए प्रेम गीत फिल्म किसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है मिले जुले गीत गजलों का प्रोग्राम सबरस। आज के सबरस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं दानिश अलीगढ़ी के कलाम

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: सबरस प्रोग्राम में आइए आपको सुनवाते हैं जोश का कलाम। फनकार हैं चंदन दास।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सप्रस प्रोग्राम के समापन में आपको सुनवाते हैं अहमद फराज का कलाम। फनकार हैं गुलाम अली।

गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ आज का मिले जुले गीत गज़लों का प्रोग्राम सबरा सब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 वहीं कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहनवाज खान और अर्जुनन रमन का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गरिमा और दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी। IPL क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला गुजरात टाइटन से। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में। और भारत ने एशिया ओशोनिया चैंपियनशिप का खिताब तीसरी बार जीता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक शामिल है। पुरुषों के हाई जंप में भारत के बसंत 2.20 की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज खान ने 7.84 मीटर लंबी कूद के साथ स्वर्ण, और इसी वर्ग में जितिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 की कूद के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन जारी है, अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहां हाई जंप पर पूजा ने कल राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड को सुधार कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था। वहीं उन्होंने सहाना कुमारी का नेशनल रिकॉर्ड भी कल अपने को तोड़ करके अपने नाम नया रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं वियतनाम, जहां कुश्ती अंडर 17 का मुकाबला जारी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गरिमा और दीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं कैसा रहा कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: एशियाई अंडर 17 कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग श्रेणी में कई पदक अपने नाम किए। 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने मंगोलिया की नामुंत सेटसेक बेथबोल्ड को 18-6 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने उज्बेकिस्तान की मुखलिसा मशारी पोवा को 6-0 से हरा कर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। 40 किलोग्राम वर्ग में पलक ने चीन की मिनिया फांग को 6-2 से पटकनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में अनामिका ने मंगोलिया की तनसर्मा बेटसूरी को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम वर्ग में अक्षरा ने वियतनाम की थी होई थू बुई को 10-0 से हराया। वहीं साक्षी ने कजाकिस्तान की एरिना कोनी सोवा को 10-0 से हराकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम वर्ग में मान्या राजपूत ने कजाकिस्तान की ही एगेरिम पोलटोबे को 10-0 से हराकर एक और कांस्य पदक भारत के लिए जीता। उधर पुरुषों के 71 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अनुज ने तुर्कमेनिस्तान के मेकान हुदे बेरेन को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के टीम रैंकिंग में भारत पहले, वहीं पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अभी हमें ताज़ा जानकारी मिली है, जहां निकिता ने 39 किलोग्राम वर्ग में और अंतरा ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। सीधे लिए चलते हैं आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां पर महिला क्रिकेट का T20 मुकाबला जारी है। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए हैं। भारत को इंग्लैंड ने 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। श्रीचरणी ने 4 ओवर में 6.2 की इकोनॉमी रेट

0: से 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर, श्रेयंका पाटिल ने वापसी भी की है और 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 60 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी थी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप से पहले ये श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आईसीसी विश्व कप जो है 12 जून से इंग्लैंड में ही खेला जाना है और भारतीय टीम इस श्रृंखला में अपने कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं गुजरात ने भी 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं पूरे मैच का हाल।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल भी 7 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। हालांकि रविंद्र जडेजा 35 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 345 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन लगाए। गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। सुदर्शन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। वहीं गिल ने 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने।
2: This is something else. It really is something else. What a 100. What a performance. Leadership at its absolute best.
1: जॉश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंदों में 16 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने। राहुल तेवतिया 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे।
2: It's over now. Tabatia. And they'll march into Ahmedabad for the final against RCB.
1: शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अब गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 204 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। आईपीएल में महज तीसरा मौका रहा जब गुजरात टाइटंस ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज किया। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि फाइनल में हमारा पूरा ध्यान बेहतर क्रिकेट खेलने पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में कल कौन सी टीम दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। एक तरफ जहां रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पाने के इरादे से उतरेगी, वहीं शुभमन गिल की लीडरशिप में गुजरात टाइटंस पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन आज दिखाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को जापान की सायका होबारा और युची शिमिगामी से हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 13-21 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अजस प्रणय और आज तनिषा क्रेस्टो और कपिला के बाहर होने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें मेन्स डबल्स जोड़ी पर होंगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल ब्राजील के जुआओ फोनसेका ने नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। वहीं आज महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में अमांदा अनी

0: सिमोवा और अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी, जबकि इगा स्वायतेक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
1: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोंसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया। शुरुआती दोनों सेट जीतकर जोकोविच मैच पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। इस दौरान जोकोविच कई बार थके हुए और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निर्णायक 5वें सेट की शुरुआत में 3-1 की अच्छी बढ़त बना ली थी। फोंसेका ने फिर से वापसी की। उन्होंने आखिरी 8 में से 6 गेम अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से पराजित किया। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड्री रूबेल को हराने के बाद ये किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ फोंसेका की दूसरी जीत है। जोकोविच के खिलाफ अपने पहले टूर लेवल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले फोंसेका ने नया इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को हराने वाले पहले युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फोंसेका पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उनका मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट से होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, सबालेंका ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, वहीं अनिसिमोवा को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने तीसरी बार जीता एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने अल्ट्रा रनिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के हिरोसाकी में हुई IAU एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 24 घंटे दौड़ में भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम ने न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किए, बल्कि पूरे व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा जमाया। अमर सिंह देवंदा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। गिनो एंटनी ने रजत और सौरभ कुमार रंजन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रदर्शन एशिया ओशिनिया स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा और किसी भी एशियाई देश का IAU चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। मुकाबले में जापान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में भारत ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय महिला टीम की ओर से तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 228.939 किलोमीटर दौड़ लगाई और कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने 2022, 24 और अब 2026 में लगातार तीसरी बार 24 घंटे अल्ट्रा रनिंग एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बात कर लेते हैं महिला हॉकी पर। जापान के काकामिगाहारा में अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलोंग के JN स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकीकृत आतिथ्य और खेल परिसर का उद्घाटन किया। बात कर लेते तीरंदाजी पर। स्लोवानिया के खामनिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुषों के रिकर्व वर्ग में भारत के सचिन गुप्ता फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका सामना कल कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुलन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।

0: तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10

करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया जहरीला इंसान फिल्म का गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

जहरीला इंसान, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत लिखा है साहिद धनवीर ने और इस गीत की धुन बनाई है जयदेव ने।

दूसरा आदमी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एफ एम 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे?

0: न्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से। एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आज़ादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आज़ादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आज़ादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज़्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश

0: जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, जो इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष।

0: लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है। क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
1: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ,

0: ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो।
0: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स।
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: हाँ, और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें 500 का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि अरे यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला। और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि

0: जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है.
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
0: बहुत ही मजेदार होता है. हाँ,
1: से एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
2: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले मैं उससे ही स्टार्ट

0: चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
1: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले मैं उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए।
0: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड,
1: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
1: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
0: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है। ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए इसका रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो

0: अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
1: जी
0: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कॉम्पोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
0: जी
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें
0: जी,
1: तो
0: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और

0: मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो न ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग with a drut composition set to ektal with the lyrics manu nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य

0: रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफ एम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी पहली सभा में कल

FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी पहली सभा में कल